अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री रामलला भगवान की, श्री आनंद कंद भगवान की, श्री कौशल्यानंदन भगवान की, श्री दशरथ नंदन भगवान की, श्री कैकेयी नंदन भगवान की, श्री सुमित्रानंदन भगवान की, श्री चारो भैयन की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री काशी विश्वनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू महारानी की, जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, समस्त पूर्वाचार्यों की, सर्व संत वैष्णव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, गो माता की, भारत माता की, प्रातः श्रृंगार आरती की, जय जय श्री सीताराम।

वितर्कवीजि विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रियादितं प्रयान्ति तेर्गतिं स्वकं तमेकमद्भुतं ब्रह्मं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरु।

सरस्वती की, श्री राम लला भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय, श्री राम जय, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

आदाब। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण, जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाएंगे। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको लगातार अवगत करते रहेंगे। हमारे संवाददाता भी इस दौरान पल पल की ताज़ा जानकारी लेकर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।

श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फैज़ान कुरैशी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो एफ़ एम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफ एम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म, न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाते रहते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण में के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुँचा रहे हैं। जी श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है जावेद मेहराब जी। जी जावेद साहब, हमें आप ये बता दीजिए कि आप इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर सबसे बड़ी और ताज़ा जानकारी क्या है?
1: जी, ताज़ा जानकारी यहाँ जम्मू के निवास स्थान से सिर्फ यही है। हम पिछले लगभग 3 दिनों से लगातार ये रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि शहर में जहाँ बारिश जो है वो लगातार जारी है, कल दिन भर भी बारिश जो है वो लगातार जारी रही, जिसके चलते अभी जो तीर्थ यात्रा है वो पूरी तरह से यहाँ स्थगित जरूर है। और लेकिन इस दौरान जो भगवती नगर जम्मू में बाबा बर्फानी के जो श्रद्धालु हैं वो लगातार अपने जोश व खरोश को बनाए हुए हैं और यहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तन और भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए समय बिता रहे हैं। और उस जज्बे को बराबर और जोश व खरोश को बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि मौसम जल्द ही साफ होगा और यात्रा फिर से शुरू होगी। लेकिन मौसम अभी पूरे संभाग में तेज बारिशों का है। यहाँ पूरे शहर में भी पूरे दिन कल बारिश होती रही, कहीं हल्की कहीं तेज, जिसकी वजह से पूरा शहर जो है उसकी जो रफ्तार भी है वो भी थोड़ी थम गई, क्योंकि बारिश के दौरान ज्यादातर लोग जो है वो घरों के अंदर ही रहना पसंद करते हैं और इस दौरान जो नदी नदी और उसके साथ साथ जो संभाग की दूसरी नदियां हैं वो अपने उफान पर है। उसके अलावा नाले जो हैं शहर के और इस बीच वो भी खतरा बने हुए हैं। कल बाहर जो लोग आवाजाही कर रहे हैं, इसलिए प्रशासन और अधिकारी इस दौरान जुटे हुए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनकी जो उनको लेकर जो यहाँ पूरी तरह से सुरक्षा को सतर्क किया गया है उसको लेकर बहुत बहुत पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु भी बारिश के इस मौसम में यहाँ के बाजारों, यहाँ के पर्यटक स्थलों या दूसरे स्थानों पर देखे जा सकते थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश का मौसम रहा और कल जो पूरे दिन बारिश रही, उसकी वजह से बिल्कुल जो श्रद्धालु भी हैं वो भी अपने निवास स्थानों में ही रुके हुए हैं। लेकिन इस दौरान निवास स्थान भगवती नगर में खास तौर पर, क्योंकि वहां से ही ये तीर्थ यात्रा जो पहला निवास स्थान है रवाना हो रही होती है, और जिसकी वजह से यहाँ जो निवास स्थान में जो श्रद्धालु हैं वो अपना जो समय है वो किसी तरह से बिताना तो जरूरी है, क्योंकि अंदर ही है तो यहाँ जो जोश खरोश है, यहाँ के अंदर भजन कीर्तन का, यहाँ भगवान शिव के नाम का जो जाप जो है वो लगातार जारी है। अलग अलग जो लोग हैं वो अलग अलग तरह से अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं, क्योंकि लगभग कोई 7,000 से ज्यादा तीर्थ यात्री इस अकेले ट्रांजिट कैंप्स में तैयार हैं रवाना होने के लिए। लेकिन बाधा सिर्फ मौसम की है।

और प्रशासन की अनुमति की है, लेकिन प्रशासन भी अनुमति तभी देगी जब मौसम बिल्कुल साफ होगा, रास्ते की हालत बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, उसके साथ ही रवाना होने की इजाजत दी जाएगी। इस दौरान यहाँ सुरक्षा जो है वो पूरी तरह से चाकचौबंद है और सुरक्षा को और सतर्क किया गया है, एजेंसियां और पूरी तरह से सतर्क हो गई है ताकि किसी भी तरह का कोई अंतर न हो जाए। नदी नाले अपने उफान पर है, पड़ताल के बाद ही बाहर आने की इजाजत होती है और इस दौरान श्रद्धालु जो है यहाँ दूसरे निवास स्थानों पर है वो भी किसी तरह से कई बार अपने छाते लेकर और यहाँ अपने अपने जगह से निकलकर निवास स्थान भगवती नगर की तरफ आते हैं और कोशिश करते हैं यात्रा के बारे में और जानकारी देने की। हालांकि तीर्थ यात्रा की जानकारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये अवगत कराया है कि मौसम के साफ होने के साथ साथ रास्ते की को की हालत को जब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक तीर्थ यात्रा स्थगित रहेगी, लेकिन पहले मौसम का ठीक होना जरूरी है क्योंकि खराब मौसम के चलते अभी न सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाधाएं हैं बल्कि यहाँ भी यहाँ से तीर्थ यात्रा का रवाना होना तभी मुमकिन हो सकता है जब मौसम ठीक होगा। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम खराब होने से यात्रा जरूर रुकती है क्योंकि उनका जोश जज्बा जो है वो बराबर भरा हुआ है और लेकिन बाबा बर्फानी के स्थान तक पहुंचने का उनका जो संकल्प है वो पहले की तरह मजबूत है। उन्हें उम्मीद है कि जैसे ही प्रशासन की अनुमति होगी वो पवित्र गुफा की तरफ उसी जोश जज्बे के साथ रवाना होंगे। श्रद्धालुओं के मुताबिक आधार शिविर में उनके रहने खाने और अन्य जरूरी सुविधाओं का अच्छा इंतजाम है, समय पर खाना मिल जाता है, ठहरने की व्यवस्थाएं बेहतर है, उसके अलावा चिकित्सा और सुरक्षा का भी प्रभावी इंतजाम रखा गया है और किसी भी तरह से कोई परेशानी यहाँ उन्हें नहीं है। लेकिन उनकी जो बिल्कुल जो उन्हें सिर्फ जल्दी है जल्द से जल्द यात्रा शुरू होने की और उसमें सबसे बड़ी बाधा जो है वो मौसम की है और यहाँ जम्मू में सुबह से आज मौसम जो है घने बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बारिश भी हो रही है क्योंकि सावन के महीने में कई बार एक इलाके में बारिश होती है तो दूसरे में हल्का सा मौसम बना हुआ होता है। तो आज भी लगभग कोई आठवां सावन है, इस सावन के महीने में मंदिरों में रश जरूर देखने को मिल रहा है क्योंकि खास तौर पर जो पूजा अर्चनाएं भगवान शिव की होती है वो खासतौर पर इस सावन के महीने में होती है और आज आठवां सावन है और लगातार स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी यहाँ के स्थानीय मंदिरों में देखे जा सकते हैं। हालांकि बारिश भी है, सड़कों और चौक चौराहों पर जल भराव भी हो गया है, मौसम का रुख पूरी तरह से विपरीत चल रहा है जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही भी मुतासर है, बाजारों में रौनक ना के बराबर है, स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी सिर्फ अपने जहां अपने घरों में स्थानीय लोग रुके पड़े हैं वही जो श्रद्धालु है वो यहाँ के ट्रांजिट कैंप्स में वहीं पर रुके हुए हैं और आसपास के मंदिरों में या ज्यादा से ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं और जो पर्यटकों की भीड़ जरूर है क्योंकि जो श्रद्धालु दर्शन कर वापस अपने घरों को लौट रहे हैं वो अपनी ट्रेनों के इंतजार में है क्योंकि उनके भी गेट्स हैं ट्रेन के, तो वो वहां पर रश लगा हुआ है और लगातार आहिस्ता आहिस्ता प्रशासन जो है घाटी से दर्शन कर श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू की तरफ भी रवाना करती आई है करती रही है और कल भी ऐसा रहा। और क्योंकि जो श्रद्धालु भी है जो घाटी में अभी रुके हुए थे वहां के ट्रांजिट कैंप्स में वहां भी यात्रा बंद है तो उसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग का ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है वो भी दरबतर है बारिश से और कई जगह पर भूस्खलन भी हुई है, कई जगह पर लोगों की जाने भी गई है क्योंकि जो भूस्खलन है या पत्थरों का गिरना है पहाड़ों पर जब लगातार बारिश गिरे तो पहाड़ों की भी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरह से उसको सुनिश्चित कर रही है कि किस तरह से यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखते हुए उन्हें जम्मू की तरफ

0: रवाना कर दिया जाए, वो भी एक तरफ से वो काम भी चल रहा है, और दूसरी तरफ जो यहाँ लोग जो श्रद्धालु यहाँ रुके हुए हैं उनके रहने खाने की कोई परेशानी नहीं है, उनकी व्यवस्था और प्रबंधन में कोई कमी नहीं है, और खुद जो तीर्थयात्री और श्रद्धालु है वो भी इस बात का बिल्कुल बताते हैं कि यहाँ
1: एतराफ कर रहे हैं,
0: हाँ एतराफ कर रहे हैं कि कोई उस लेवल पर कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ जल्दी और परेशानी ये है कि जल्द से जल्द रास्ता जो है वो बिल्कुल ठीक हो और जल्दी उन्हें अनुमति मिले रवाना होने की। लेकिन इस बीच जो है यहाँ के नदी नाले भी बड़े उफान पर है, और यहाँ जो SDRF NDRF और उसके अलावा जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी इन नदी नालों के नजदीक जाने से लोगों को रोक रहे हैं। श्रद्धालुओं को भी खास तौर पर सख्ती से मना किया गया है कि किसी भी तरह से तभी नदी के आसपास या किसी भी नाले के आसपास नाच जाए, क्योंकि जो खतरा है वो कई बार बारिश के दौरान बहुत बढ़ जाता है और हादसा भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन ने सतर्क को बनाए रखा हुआ है और तीर्थयात्री भी इस बीच बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें मौका मिलेगा, कब उन्हें रवाना होने की अनुमति मिलेगी। और जो सावन का ये महीना है, अब इसमें खास तौर पर जो तीर्थयात्री हैं पूजा अर्चनाओं में ज्यादा देखे जा सकते हैं। कल भी हम देख रहे थे जो यहाँ निवास स्थान भगवती नगर है वहाँ लगभग जैसा मैं कह रहा था कि 7,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ रुके हुए हैं। वो इस बारिश के मौसम में बिल्कुल शांत भी है लेकिन कहीं कहीं जज्बाती भी है और कहीं कहीं अपनी पूजा अर्चनाओं में भी व्यस्त है। इस दौरान बारिश के बावजूद भी यहाँ निवास स्थान में जो तीर्थयात्री दूसरे ट्रांजिट कैंप से यहाँ पहुंच रहे हैं वो भी जानकारी लेने पहुंच जाते हैं। तो श्रद्धालु जो है उनकी अलग अलग मांगे भी होती हैं इस दौरान। कई श्रद्धालु ये कहते हैं कि उनके दस्तावेज पर आज ही डेट को लिख दिया जाए ताकि वो जल्द से जल्द रवाना हो जाए, लेकिन कई बार प्रशासन भी अपनी तरफ से अपने इंतजाम में होती है या तीर्थयात्रियों की जो मांगे होती हैं वो भी सुननी जरूरी है, सुन भी रहे लेकिन जल्दबाजी में भी फैसला मुश्किल लग रहा है मुझे होते। और यहाँ जम्मू में पूरे दिन बारिश होने से जो है बहुत जो नाले हैं जो बाकी जो चौराहे हैं उनमें भी जल भराव है और बारिश की वजह से शहर समझ ले आपकी रुका पड़ा है। तो अब कुल मिलाकर जो है तीर्थयात्रियों को इंतजार ही एक इंतजार और सब्र से ही काम लेना पड़ेगा। और अभी मौसम विभाग ने कुछ सुधार के आसार जरूर जताए हैं, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं कम कहीं ज्यादा बारिश होने की भविष्यवाणी अभी भी है। अब ये देखना होगा कि मौसम क्या करवट लेता है, मौसम का रुख कैसे बदलता है और तीर्थयात्रियों के लिए ये रवाना होने की जो लालसा है वो कब पूरी होती है और उन्हें कब जल्द से जल्द रवाना कर दिया जाए, ये सिर्फ निर्भर जो है वो मौसम पे नहीं करता है। और इस बीच इंतजाम या प्रबंधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और लेकिन सिर्फ शहर में जो हम देखते थे चौक चौराहों पर या बाजारों में जो रौनक थी वो मौसम की वजह से थोड़ी रुकी जरूर है। अब सिर्फ इंतजार है मौसम के ठीक होने का। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि मौसम के इस खराब रुख को जल्द से जल्द कैसे ठीक होगा, यह कुदरत का अपना फैसला है और तब तक श्रद्धालुओं को इंतजार तो करना ही पड़ेगा।
1: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद महराब जी ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए,
0: बहुत शुक्रिया
1: जी। बात कर रहे थे जम्मू से जावेद महराब जो हमारे संवाददाता हैं, और ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है ये उससे हमें अवगत कर रहे थे, आगाह कर रहे थे कि इस वक्त मौसमी सूरत हाल क्या है और प्रशासन की जानिब से किस तरह की तैयारियां जो है और किस तरह की फैसिलिटीज जो है वो श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है। और उनका ये भी कहना है कि जो इस वक्त मौसमी सूरत हाल है अब वो अभी भी हल्की हल्की बारिशें हो रही है।

सामिन आप समाप्त कर रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। हम और भी आपको

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेविज OTT प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पूछा रहे हैं। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी आपको लगातार हम अवगत करते रहेंगे। श्रोताओं, अब समय हो चुका है समाचार का, आइए दिल्ली से समाचार।

अब सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण। और यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें। मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें।

0: प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल सरकारी कामकाज में सुधार लाना नहीं, बल्कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा को गति देना है। लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में शासन को मजबूत करने, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय में सुधार करने और नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से किए जा रहे सुधारों को लागू करने में तेजी लाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक कल्याण और संबद्ध क्षेत्रों में विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने का महत्व है। मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को जन आंदोलन में बदलना चाहिए, जिससे देश के युवा इस राष्ट्रीय मिशन की नींव बने। युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने विभागों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने और युवाओं पर केंद्रित प्रयासों को एकीकृत करने वाली संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र को भी मजबूत करने में पीएम कुसुम योजना की परिवर्तनकारी क्षमता का भी उल्लेख किया, जिसे किसानों ने बड़े पैमाने पर अपनाया है। भानु और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने और इस समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नीति बनाने को तैयार है। नई दिल्ली में श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने और बार बार नई मांगे करने की बजाय पेपर लीक के गंभीर मुद्दे पर संसद में सार्थक चर्चा में भाग लेना चाहिए।
2: ये गंभीर मसला है, हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, हमने किस तरीके इसको एड्रेस किया है और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए, क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका हमको का कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि हमारे छात्रों के साथ अन्याय न।
0: श्री नड्डा ने कहा कि विपक्ष को समय सीमा तय करनी चाहिए और हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए ताकि एक ठोस नीति तैयार की जा सके। श्री नड्डा ने कांग्रेस और अन्य विपक्ष शासित राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चुनिंदा घटनाओं का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि दुर्भाग्य से राहुल गांधी इस मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण

0: कृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। परमाणु ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों को चालू करना है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि संसद ने शांति अधिनियम 2025 पारित किया है, जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलता है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा मिशन में घोषित 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2047 तक प्राप्त करने की रूपरेखा तैयार की है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए से अधिक के संयुक्त निवेश से 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य राज्य के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों को और आगे बढ़ाना है। ये घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में की। दोनों क्लस्टर मन्नलूर और पिल्पाइकम में विकसित किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इस महीने की 29 तारीख से मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। इससे पहले उत्तर मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गॉर्डोना सियोनोस्का दाफकोवा ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति का महिला होना गर्व की बात है। स्कॉर्पियो में आकाशवाणी संवाददाता शुभाश्री महापात्रा से बातचीत में सुश्री दाफकोवा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया है कि केवल महिलाएं ही दुनिया को बदल सकती हैं।
2: What is the most important?
3: सबसे महत्वपूर्ण और गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की राष्ट्रपति एक महिला है। मैं पहले से ही भारत के लंबे इतिहास और आध्यात्मिकता से प्रभावित थी। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलकर मैं और अधिक प्रभावित हुई हूँ।
2: With deep feelings, emotional intelligence.
1: आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इस दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता।
4: राष्ट्र प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है और ये दिन हमें याद दिलाता है कि भारत के विकास, शिक्षा का प्रसार और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में प्रसारण की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आजादी के आंदोलन से लेकर राष्ट्र निर्माण तक रेडियो ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने, साक्षरता बढ़ाने, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और किसानों को खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी देने में

0: योगदान दिया है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वर्ष 1956 में राष्ट्र प्रसारक ने आकाशवाणी नाम अपनाया और इसके बाद 1957 में विविध भारती सेवा की शुरुआत हुई। पीढ़ियों से आकाशवाणी अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अनुरूप लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करती आ रही है। आज डिजिटल युग में भी रेडियो अपनी विश्वसनीयता और सरल पहुंच के कारण लोगों का भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। प्रिया के साथ मैं दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब खेल समाचारों के साथ हैं चिराग झा।
2: प्रियंका, सबसे पहले बात 23वें राष्ट्रमंडल खेलों की करते हैं, जिसका शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस वर्ष केवल 10 खेल शामिल होंगे। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। भारत ने पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में 61 पदक जीते थे। वहीं 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज हरारे में खेला जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। श्रृंखला का दूसरा मैच शनिवार और तीसरा मैच रविवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। इस बीच चीन के चांगझोऊ में चल रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु ने अपने ही देश की उन्नति हुड्डा को पराजित किया। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अल्वी फरहान को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर इस दौर के लिए जगह बनाई। खेल समाचार में फिलहाल इतना ही।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्वैच्छिक बंद और चक्का जाम हड़ताल जारी है। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से आज पूरी ताकत के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। पाकिस्तानी विश्लेषक ओम प्रकाश दास ने बताया है कि चक्का जाम का आह्वान एक बहुत बड़ी घटना है।
3: पीओजेके में जो अवामी एक्शन कमेटी ने एक शक्ति प्रदर्शन का आह्वान दिया है अपने लोगों को, ये बहुत ही एक बड़ी घटना है, क्योंकि जैक को ऐसा लगा है कि पाकिस्तानी हुक्मरान ने उनको धोखा दिया। उन्होंने ये बयानबाजी किया कि जैक के साथ बात हो गई है, बात चल रही है और आगे प्रोटेस्ट खत्म होने हो रहा है। जैक ने ये बयान दिया, सरकार के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई है।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद प्रियंका। संसद से जंतर मंतर तक गतिरोध तोड़ने को बड़े कदम, नीट पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन से जुड़ी खबरें आज भी दैनिक जागरण सहित सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, सरकार के हाथ बढ़े पर विपक्षी अड़े, केंद्र सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार, कॉकरोच जनता पार्टी को बातचीत का प्रस्ताव दिया। दैनिक भास्कर ने सोनम वांगचुक के इस बयान को प्रकाशित किया है, युवाओं पर कार्रवाई ना हो तो अनशन खत्म कर सकता हूं। अमर उजाला ने बताया है, जनतर मंतर पर फिर पथराव, 2 ACP समेत 6 पुलिसकर्मी घायल। दैनिक जागरण ने चर्चा की प्रतीक्षा में संसद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि विपक्ष को परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने वाले ठोस तंत्र के निर्माण में सरकार को जवाबदेह बनाने का साथ उसका सहयोग भी करना चाहिए। यह तब संभव होगा जब इस पर संसद में गंभीरता से चर्चा होगी। राजस्थान पत्रिका की खबर है, पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में कांस्टेबल तथा राइफल मैन पदों पर 50% आरक्षण मिलेगा। उम्र तो बढ़ी पर बीमारियों के साए में बीत रहे जीवन के साल, दैनिक जागरण ने एक अध्ययन के हवाले से बताया है कि वर्ष 2023 में दुनिया भर में लोग अपनी पूरी जिंदगी का औसतन 14.5% हिस्सा अस्वस्थता में बिता रहे हैं।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नागरिकों का कल्याण सभी सुधारों के केंद्र में होना चाहिए और शासन की नीतियां जनता की जरूरतों के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा, सरकार संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। भारत 2033 तक 5 छोटे परमाणु बिजली रिएक्टर चालू करेगा। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के 2 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया की 2 दिन की यात्रा पर और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister JP Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And 23rd Commonwealth Games to begin in Glasgow, Scotland today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said that welfare of citizens must remain at the heart of all reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. He said reforms should not only improve the functioning of the government but also accelerate India's journey towards becoming a developed nation. We have a report.
2: Prime Minister Modi made these remarks while chairing a high-level meeting with secretaries to review the progress of rural development, agriculture, social welfare and allied sectors in advancing the vision of Viksit Bharat. The meeting held at the Prime Minister's residence focused on strengthening governance, improving inter-ministerial coordination and accelerating the implementation of reforms aimed at enhancing citizens' welfare. Highlighting the rapidly evolving governance landscape, Mr. Modi stressed the need to modernize governance processes in line with changing times. Calling for greater convergence among ministries, he said the vision of Viksit Bharat should become a Jan Andolan with the country's youth forming the foundation of this national mission. Addressing the issue of drug abuse among young people, Prime Minister stressed the need for an institutional mechanism that promotes coordination across departments and integrates youth-centric initiatives to tackle the challenge more effectively. On sports, Mr. Modi advocated an integrated development strategy to position India as a global sporting destination. Prime Minister also highlighted the transformative potential of the PM Kusum scheme in strengthening the agriculture sector through wider adoption by farmers. He further emphasized the need for a global mapping of skill requirements to align India's workforce with emerging international opportunities and future employment demands. With Bhanu and Suparna, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
5: Senior BJP leader and Union Minister JP Nadda has said that government is ready to discuss the NEET paper leak issue in Parliament and formulate an effective policy to ensure a permanent solution to the issue. Addressing media in New Delhi, Mr. Nadda said, instead of indulging in blame games and constantly shifting the goalposts, the opposition should participate in a meaningful parliamentary discussion on the serious issue of paper leaks. He said paper leaks are a national concern and not an issue confined to any one government or political party, yet the opposition continues to politicize the matter. He said this is a serious problem which deserves a thorough and sincere discussion. Mr. Nadda said Parliament is the most appropriate forum where in-depth discussion on the matter can take place.
6: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, what are the factors which are leading to paper leak, who are the people involved and how the central government has responded. जब हमारे ध्यान में कोई paper leak आया है तो हमने किस तरीके से इसको address किया है.
5: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has informed that 16 metro stations will be closed from 7:30 a.m. till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramakrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprasth, Khan Market, Jorbagh and Shivaji Stadium. However, DMRC noted that the interchange facility will remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. Minister of State in the Department of Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, has said that government is aiming to bring at least 5 indigenous small modular nuclear reactors into operation by 2033. We have a report.
7: In a written reply in Lok Sabha, the minister said Parliament has enacted the Shanti Act 2025, which opens the nuclear energy sector to private participation. Dr. Singh said Bhabha Atomic Research Center is developing a 220 megawatt Bharat Small Modular Reactor, a 55 megawatt

0: hot reactor and a high temperature gas cooled reactor designed to produce hydrogen. Government has drawn up a roadmap for reaching the 100 gigawatts nuclear power capacity by 2047 as announced in the Nuclear Energy Mission. The minister stated that as per the roadmap, the present nuclear power capacity of 8.78 gigawatts is expected to reach about 22 gigawatts by 2031-32 on progressive completion of projects presently at various stages of implementation. Komadi Parekh, Akashvani News, Delhi.
1: The centre has approved two electronics manufacturing clusters, EMCs, in Tamil Nadu with a combined investment of over 1,012 crore rupees. The move is aimed to strengthen the state's electronics manufacturing ecosystem and further India's push towards self-reliance in the sector. We have details from our correspondent.
2: The announcement was made by Union Minister for Electronics and Information Technology Ashwini Vaishnav in a written reply in the Lok Sabha yesterday. The government said India's electronic manufacturing sector has witnessed significant growth over the past decade, supported by reforms such as production-linked incentive schemes, liberalized FDI norms, tax reforms and labor reforms. Electronics production has increased from nearly 1.9 lakh crore rupees in 2014-15 to around 13.11 lakh crore rupees in 2025-26, while exports have risen from about 38,000 crore rupees to 4.24 lakh crore rupees during the same period. Mobile phone production has also grown more than 30-fold to 6.27 lakh crore rupees, with exports touching 2.59 lakh crore rupees. India now manufactures nearly 99.2% of the mobile phones sold domestically, and the sector provides employment to nearly 25 lakh people according to industry estimates. Payal Sharma, Akashvani News, Delhi.
1: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the morning news. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Romania beginning today. During her visit, President Murmu will meet Romanian President Nicăsăr Dan, Interim Prime Minister Ilie Bolvan, President of the Senate Mircea Abrudin, and President of the Chamber of Deputies Sorin Grindeanu. She is also scheduled to meet the members of the Romanian-India Parliamentary Friendship Group. President Murmu is currently on an historic state visit to North Macedonia, one destination that stands out not only for its breathtaking beauty, but also for its rich history and global significance, Lake Ohrid. Let's hear more about this unique destination from our correspondent Subhashree Mahapatra, covering the president's visit.
3: Lake Ohrid is one of the Europe's oldest and deepest lakes. It lies on the border between North Macedonia and Albania and is famous for its exceptionally clean water, rich biodiversity and cultural heritage. More than 200 plant and animal species are found only in this lake, making it a globally important ecological site. The lake is also a UNESCO World Heritage Site. Lake Ohrid is often considered one of the Balkans' most beautiful destinations because it combines spectacular scenery, ancient history, and unique wildlife in one place.
1: Earlier, President of North Macedonia, Gordana Silvanovska Davkova, said that it is a matter of pride that a woman is the president of world's largest democracy, India. Talking to Akashvani News in Skopje, Ms. Devkova said she was earlier impressed by India's long history and also spirituality.
4: What is the most important? You have to be proud indeed of your nation. You have to be proud of your history. But also India has a woman as the president that is really something special, knowledgeable, with deep feelings, emotional intelligence.
1: National Broadcasting Day is being observed today. On this day in 1927, the first ever radio broadcast in the country went on air from the Bombay station under the Indian Broadcasting Company. On the 8th of June 1936, the Indian State Broadcasting Service became All India Radio. The day commemorates nearly a century of broadcasting's contribution to informing, educating, entertaining and uniting the nation. Details on this from our correspondent.
5: This day highlights the pivotal role broadcasting has played in India's development, educational outreach and cultural preservation. From the freedom movement to nation building, radio has played a vital role in disseminating information, promoting literacy, creating health awareness and sharing agricultural knowledge, particularly in rural India. In 1956, the name Akashvani was adopted for the national broadcaster. The Vivid Bharati service was launched in 1957 with popular film music as its main component. For generations, Akashvani has been serving to inform, educate and entertain the masses, truly living up to its motto, Bahujan Hitai, Bahujan Sukhai. National Broadcasting Day celebrates not just technological progress but also radio's enduring power to inform, educate, entertain and unite a diverse nation. With Priya Mondal, this is Dilnashi Yarzu, Akashvani News, Delhi.
1: A voluntary shutdown and wheel jam strike continue in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. The Joint Awami Action Committee, JAAC, has urged people of the POJK to participate in the protests today with full strength to demand implementation of their demands and pray for those who were killed by Pakistani authorities during the movement. In a social media post, JAAC has termed today as a day of utmost importance. The JAAC leader slammed the Pakistani authorities, describing the rulers as killers of the innocent people who have been murdered in retaliation for demanding their rights. On to sports. The 23rd Commonwealth Games CWG will begin today in Glasgow, Scotland. Teams from 74 nations will participate in the 10-day event. Olympic medalists Neeraj Chopra, Meerabai Chanu and Lovlina Borgohain are set to represent India at the CWG 2026. Indian contingent comprises 125 members, including para-athletes. India won 61 medals at the last Commonwealth Games. However, this year's Commonwealth Games presents a different challenge with fewer medal events and a significantly smaller sporting program. In China Open Badminton, India's PV Sindhu, Ayush Shetty and Lakshya Sen have entered singles pre-quarterfinals in Shangzhou. Double Olympic medalist PV Sindhu advanced to the women's singles second round after defeating fellow Indian player Unnati Hooda by 21-14, 9-21, 21-10 in a round of 32 clash. In the men's singles, Ayush Shetty defeated number 11 Alvi Farhan of Indonesia to reach the round of 16. In another round of 32 match, Lakshya Sen defeated Japanese player Yushi Tanaka 22-20, 15-21, 21-14. And now for a look at today's newspapers. It's over to Subhadra Ramachandran.
6: Thank you, Sarabjit. On the margins of ASEAN engagements, Jaishankar conveys to Lavrov India's concern over safety of Indian seafarers, notes a statesman. The Financial Express informs, cross-holding caps set to ease. Airline doors may open for Adani GMR. 100% tariff on generic drug imports into US from 2028. Trump prescribes new pill. India's side effects unlikely, states the Economic Times. And finally, the Financial Express, on its editorial page under the caption Oil on the Boil Again, writes, Brent spot prices have gone well past $90 a barrel with the war clouds over West Asia. The prospect for costlier oil is bad news for countries like India that imports 88% of its energy requirements, which would widen its trade deficit and push up inflation. And with that, it's back to you, Sarabjit.
1: Thank you, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says citizen welfare must remain at heart of reforms and governance initiatives should be designed around people's needs. Union Minister J.P. Nadda says government ready to discuss NEET paper leak issue in Parliament and formulate effective policy to ensure permanent solution to the issue. India to make 5 small nuclear power reactors operational by 2033. Centre approves 2 electronics manufacturing clusters worth 1,012 crore rupees in Tamil Nadu. President Draupadi Murmu to be on a 2-day visit to Romania beginning today. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
7: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद हर इस्लाह का बुनियादी मकसद होना चाहिए और हुकूमत के इकदाम अवाम की जरूरियात को मद्देनजर रख कर तैयार किए जाने चाहिए। वजीर आजम ने कहा कि इस्लाहात को न सिर्फ हुकूमत के कामकाज को बेहतर बनाना चाहिए बल्कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के सफर को भी तेज करना चाहिए। पेश है एक रिपोर्ट।
8: वजीर आजम मोदी ने यह बात सेक्रेटरियों के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए कही, जिसमें देही तरक्की, ज़राअत, समाजी बहबूद और दिगर मुतालिका शोबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। ये मीटिंग वजीर आजम की रिहाइशगाह पर मुनाकिद हुई, जिसमें हुक्मरानी को मजीद मुअसर और मजबूत बनाने, मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान तालमेल को बेहतर बनाने, अवामी फलाह के लिए इस्लाहात पर तेजी से अमल दरामद करने पर जोर दिया गया। तेजी से बदलते हुए हुक्मरानी के मंजरनामे को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने बदलते हुए वक्त के मुताबिक हुकूमत के निज़ाम को जदीद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत का विजन एक जन आंदोलन बनना चाहिए, जिसमें मुल्क के नौजवान इस कौमी मिशन की बुनियाद हों। उन्होंने नौजवानों में मुनशियात के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर ताउन और नौजवानों पर मरकूज प्रोजेक्टों को मरबूत करने के लिए एक इदारा जाती निज़ाम कायम करने की ज़रूरत है, ताकि इस चैलेंज से ज़्यादा मौसर अंदाज में निपटा जा सके। इसके अलावा खेलों के शोबे में भी वज़ीर आज़म मोदी ने जामे और मरबूत तरक्की पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक जामे हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए, ताकि भारत को खेलों के आलमी मरकज़ के तौर पर कायम किया जा सके। उन्होंने PM कुसुम स्कीम की ज़रिए शोबे की कायापलट की सलाहियत को भी उजागर किया और कहा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस स्कीम को अपनाएं तो इससे ज़राअत को नुमाया फ़ायदा पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया भर में दरकार महारतों का जामे जायज़ा लिया जाए, ताकि भारत की अफरादी क़ुव्वत को आलमी सतह पर उभरने वाले रोज़गार के मौक़े और मुस्तक़बिल की मुलाजमतों की ज़रूरियात के मुताबिक तैयार किया जा सके। नई दिल्ली से चिराग झा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
7: सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि तलबा की जानिब से उठाए गए नीट पेपर लीक मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और इस मामले से सियासी फायदा उठाना मुनासिब नहीं है। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ये जांच का मौजू है जिस पर तफसीली बातचीत की ज़रूरत है। जनाब नड्डा ने कहा कि पेपर लीक एक संगीन मसला है जिस पर संजीदगी से गौर व खौज जरूरी है।
9: गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर लीडिंग टू पेपर लीक, हु आर द पीपल इन्वॉल्वड एंड हाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड। जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है।
7: मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में NDA हुकूमत ने इस मामले को इंतहाई संजीदगी से लिया है। उन्होंने हुकूमत के इस मौकिफ को दोहराया कि पार्लियामेंट में नीट के मामले पर बहस के लिए वो तैयार है और अपोजिशन बहस के दौरानिए का फैसला कर सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट ही वो सबसे मुनासिब मौजू फोरम है जहां इस मामले पर तफसीली और जामे बहस की जा सकती है। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि अपोजिशन पेपर लीक जैसे संगीन मामले पर बामानी पार्लियामानी बातचीत की बजाय इल्ज़ाम तराशी का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक कौमी तशवीश का मामला है जो किसी एक हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी अपोजिशन इस मामले को सियासी रंग देने में लगी हुई है।
9: मैं पूछना चाहूंगा विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी से कि आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आपने यूपीए की और यूपीए के सपोर्टेड सरकारों को उनकी गवर्नमेंट्स के बारे में आपने क्यों

0: नहीं चर्चा, क्यों आपने अपने आप को उससे अलग रखा? यह स्पष्ट बताता है कि आपका उद्देश्य छात्रों का हित नहीं है, आपका उद्देश्य एजुकेशन की क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्टूडेंट्स को जस्टिस मिले, इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है।
1: जनाब नड्डा ने कांग्रेस और अपोजिशन की हुक्मरानी वाली रियासतों में मुख्तलिफ इम्तिहानात के पेपर लीक के मामले भी उठाए। उन्होंने कांग्रेस लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी पर जानिबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाते हुए सवाल पूछा कि वो इन वाकयात पर बात क्यों नहीं करते। जनाब नड्डा ने जनाब गांधी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस मामले से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, जो कि अफसोसनाक है। जनाब नड्डा ने कहा कि जनाब गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई प्रेजेंटेशन में 150 इम्तिहानी पर्चों के लीक होने से मुतालिक बात की। जनाब नड्डा ने मजीद कहा कि ये जांच का मौजू है और हुकूमत बिलाशुबा इसकी जांच करेगी और मुल्क और अवाम के सामने सच्चाई को पेश करेगी। हुकूमत ने नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बामानी मुबाहसे के लिए तैयारी की बात दोहराई है। लोकसभा में कल इस बारे में इजहार ख्याल करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि हुकूमत मुल्क के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए पार्लियामानी जवाबित के तहत इस मामले के सभी पहलुओं पर बामानी मुबाहसे के लिए तैयार है। जनाब रिजिजू का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब नीट पेपर लीक मामले तलबा के मुजाहरों समेत मुख्तलिफ मौजूदात पर पार्लियामेंट की कार्रवाई अपोजिशन के हंगामा आरई की वजह से कल लगातार तीसरे दिन भी रखना अंदाजी का शिकार रही। इस दौरान राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे के बगैर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दहानी कराए कि नीट पर्चा लीक के खिलाफ एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को लिखे गए खत में जनाब वांगचुक ने दोनों वजीरों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मंगल की रात अस्पताल में उनकी अयादत की। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल मरकज और दिल्ली पुलिस से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किया है जिनमें पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने वाले मुजाहरीन के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा ताकत के इस्तेमाल का इल्ज़ाम लगाया गया था। अदालत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो पुलिस कार्रवाई से मुतालिक तमाम रिकॉर्ड महफूज रखें जिनमें CCTV कैमरों की फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। अदालत ने मुतालिका हुक्काम को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत 11 सितंबर को होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने इत्तला दी है कि कौमी राजधानी में सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अगले हुक्मनामे तक सुबह 7:30 बजे से 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। DMRC ने कहा है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सहूलत दस्तियाब रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एटमी तवानाई के महकमे के ममलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हुकूमत साल 2033 तक स्वदेशी बनावट के कम से कम 5 छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियाई रिएक्टर्स को फाल करने का इरादा रखती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लोकसभा में अपने तहरीरी जवाब में डॉक्टर सिंह ने बताया कि पार्लियामेंट ने शांति कानून 2025 को नाफिज करते हुए प्राइवेट शराकतदारों के लिए न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे के दरवाजे खोल दिए हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 220 मेगावाट का एक भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, 55 मेगावाट का एक रिएक्टर और एक हाई टेंपरेचर गैस कूल्ड रिएक्टर डेवलप कर रहा है जो हाइड्रोजन पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने न्यूक्लियाई तवानाई मिशन के तहत ऐलान करदा साल 2047 तक 100 गीगावाट की न्यूक्लियाई बिजली सलाहियत हासिल करने के मकसद से रोड मैप वजह किया है। वजीर मौसूफ ने बताया कि रोड मैप के मुताबिक 8.78 गीगावाट की मौजूदा न्यूक्लियाई बिजली की सलाहियत के साल 2031-32 तक 22 गीगावाट तक पहुँचने की उम्मीद है। ये हौसलियाबी उन प्रोजेक्टों के जरिए हासिल की जा सकती है जो फिलहाल नफाज के मुख्तलिफ मरहलों में हैं। नई दिल्ली से कमोदी पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मरकज ने तमिलनाडु में मजमुई तौर पर 1,012 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मिक्स्ड EMC को मंजूरी दी है। इस कदम का मकसद रियासत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग माहौलियाती निज़ाम को मुस्तहकम करना और इस सेक्टर में भारत को खुद इन्हेसारी की सिमत में आगे बढ़ाना है। ये ऐलान कल लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और

0: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने दी। दोनों मिक्स को मन्नालुर और पिलापक्कम में फ़रोग दिया जाएगा। मन्नालुर ईएमसी 474.3 एकड़ रकबे पर फैला होगा और इस प्रोजेक्ट पर 587.47 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि पिलापक्कम ईएमसी की तामीर 379.3 एकड़ में 424.55 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से दो रोज़ा रोमानिया दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू रोमानिया के सदर निकोसर दान, उबूरी वजीर आजम इली बोलोयान, सीनेट के सदर मिर्सिया अब्दुरिडियान और चेंबर ऑफ डिप्यूटीज़ के सदर सोरिन ग्रिंडेन्यू से मुलाकात करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया का रोमानिया भारत पार्लियामानी फ्रेंडशिप ग्रुप के अराकीन से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। सदर जमहूरिया फिलवक्त शुमाली मकदूनिया के तारीखी दौरे पर हैं। ये मकाम न सिर्फ अपनी खुदरती खूबसूरती बल्कि गोनागों तारीख और आलमी अहमियत की हामिल लेक और हिट के लिए जाना जाता है। इससे पहले शुमाली मकदूनिया की सदर गोर्डाना दावकोवा ने कहा कि यह फख्र की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत की सदर एक खातून हैं। स्कोपिये में आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए मोहतरमा दावकोवा ने कहा कि वो भारत की तवील तारीख और रूहानियत से काफ़ी मुतासिर हैं। आज नशरियात का कौमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1927 में आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से रेडियो नशरियात का आगाज़ हुआ था। 8 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम तब्दील करके इसे ऑल इंडिया रेडियो AIR रख दिया गया। ये दिन भारत की तरक्की, तालीम के फरोग और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम किरदार को उजागर करता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ये दिन भारत की तरक्की, तालीमी आगाही और सकाफती विरसे के तहफ्फुज में नशरियात के अहम रोल को उजागर करता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर मुल्क की तामीर तक रेडियो ने मालूमात की तरसील, खानदगी के फरोग, सेहत से मुतालिक आगाही पैदा करने और ख़ासतौर पर देही इलाकों में ज़रिए मालूमात पहुँचाने में नहायत अहम किरदार अदा किया। कई नस्लों से आकाशवाणी अपने नस्ल-ओ-लैन बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के ऐन मुताबिक आवाम की को मालूमात, तालीम और तफरी फराहम करता रहा है। नई दिल्ली से दिल नशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया समीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम भारत और चीन के दरमियान मामूल के ताल्लुकात की पहली शर्त। अखबार इनकलाब की सुर्खी है, खातून अरकान पार्लियामेंट पर काबिल एतराज तबसरे की पादाश में रुकन पार्लियामेंट कल्याण बनर्जी इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल। मुल्क में तैयार आबदोश शिकन जंगी जहाज INS मालवन बहरिया के बेड़े में शामिल, इस खबर को भी अखबार ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार की एक और सुर्खी है, अपोजिशन की हंगामा राई की वजह से लोकसभा में मुसलसल तीसरे दिन वक्त पर सवाल नहीं हो सका। अखबार इनकलाब लिखता है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दाना हमले में हेड कांस्टेबल की मौत। अखबारात की बैन अलाक्वामी खबरें इस तरह हैं, ईरान के साथ मुजाकरात के लिए तैयार हैं वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, ईरान के जौहरी तनसीबात के करीब अमरीका का हमला।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहरियों की फलाह व बहबूद तमाम इस्लाहात का बुनियादी मकसद होना चाहिए और आवाम की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इकदाम तरतीब दिए जाने चाहिए। मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हुकूमत नीट पेपर लीक मामले पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है और इस मसले का मुस्तकिल हल यकीनी बनाने के लिए मौसर पॉलिसी तैयार करेगी। भारत साल 2033 तक 5 छोटे एटमी बिजली घरों को फाल बनाने का मंसूबा रखता है। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु में 1,012 करोड़ रुपए मालियत के 2 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से रोमानिया के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 बैन अलाक्वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
3: सामीन, आप समाप्त कर रहे हैं

आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, वेव्स OTT प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन AIR ऐप के आराधना चैनल तथा DTH के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचाते रहेंगे और यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको अवगत करते रहेंगे। और हम इस दौरान संवाददाता जो हमारे हैं उनके साथ भी हम बात करेंगे ताकि आपको यात्रा के हवाले से जो भी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको मिलती रहेंगे और मौसम की क्या सूरत हाल है और इंतज़ाम के हवाले से जो बातें हैं वो भी संवाददाता अपने रिपोर्ट्स के ज़रिए आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष यात्रा प्रसारण जो एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुँचा रहे हैं। यात्रा मुख की वर्तमान

0: स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको लगातार अवगत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन साहब। जी तस्कीन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: जी शुक्रिया।
0: जी तस्कीन साहब, हमें ये बता दीजिए कि आप हेलो जी तस्कीन साहब, हमें आप ये बता दीजिए कि आप जिस जगह पर मौजूद है वहाँ से श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर सबसे बड़ी ताज़ा जानकारी क्या है, तो हमारे जो श्रोता है, हमारे जो सुनने वाले हैं, उन तक यात्रा के हवाले से जानकारी पहुँचा दीजिए।
1: देखिए, मैं बनहाल रामबन डिस्ट्रिक्ट में हूँ, लेकिन यात्रा आज चौथे दिन भी मौतल ही रही मौसमी खराबी की वजह से। जो जम्मू से कश्मीर की तरफ श्री अमरनाथ यात्रा चल रही थी उसे पिछले इतवार से रोक दिया गया है मौसमी खराबी की वजह से, और हम देख रहे हैं कि मौसमी खराबी मुसलसल चल रही है, शदीद बारिशें हो रही है। यहाँ रामबन डिस्ट्रिक्ट में अगर कहेंगे तो यात्रा का दो लंगर से बड़े दो लंगर से एक यात्रा निवास यहाँ चंद्रकूट में है लंगर, और उसके बाद यहाँ बानहाल में कुल मिलाकर करीबन तीन दर्जन लंगर है बानहाल के लांबर ग्राउंड और चंद्रकूट के इलाके में। तो यहाँ पर जो जब से ये यात्रा को सस्पेंड किया गया है परसों एतवार से 19 जुलाई से, तो उसके बाद से जो यहाँ पर यात्री थे करीबन 1000 से ज्यादा यात्री थे, तो वो भी कुछ दिन रहे, तो उसके बाद कुछ यात्रियों ने वापसी की राह ली है, क्योंकि उनका जो स्कूल टाइमिंग, छुट्टियां वगैरह जो भी उनके साथ निजाम होता है, क्योंकि उनको ये बताया गया कि 23 तारीख तक कम से कम यात्रा का चलने के आसार कम है, तो इसलिए वो वापस चले गए। तो अलबत्ता बहुत सारे यात्री अभी भी ठहरे हुए हैं, लंगर वाले ठहरे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब ग्रीन सिग्नल मिले दोबारा यात्रा को, कब मौसम ठीक हो, यात्रा दोबारा शुरू की जाए, तो उसके लिए वो बैठे हुए हैं। हालांकि कल तक कश्मीर से जो दर्शन के बाद, पवित्र गुफा के दर्शन के बाद जो यात्री थे उनका भी जो निजाम है वो बरकरार सिलसिला चल रहा था, और कल तक वो हजारों की तादाद में जो वहां से जो वापस आ रहे थे श्री अमरनाथ यात्री, तो वो कल तक, लेकिन आज क्योंकि हाईवे बंद है, नेशनल हाईवे पर मुख्तलिफ मुकामात पर स्लाइडिंग हुई है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में भी और रामबन डिस्ट्रिक्ट में भी, यानी अगर कहेंगे उधमपुर, रामबन और बानहाल, इस सेक्टर में कम अज कम आठ दर्जन से जायद मुकामात है जहां पर स्लाइडिंग हुई है और हाईवे मुतासिर है, और अभी फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और इस सिलसिले में ट्रैफिक एडवाइजरी भी कल जारी की गई थी। इस दौरान जो चंद्रकूट में जो यात्री ठहरे हैं अभी भी रुके हुए हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें ग्रीन सिग्नल मिले, कब मौसम ठीक हो, वो पवित्र गुफा की तरफ अपना सफर दोबारा शुरू करेंगे, तो उनके मतलब उनकी खैर और खैरियत पूछने के लिए, उनके इंतजाम का जायजा लेने के लिए कल डिप्टी कमिश्नर रामबन मोहम्मद अलियास खान और जो बाकी एसएसपी रामबन अरुण गुप्ता और बाकी जो अफसरान है रोजाना की बुनियादों पर इन कैंपों में जाते हैं, वहां पर इनका हालचाल जानते हैं और वहां पर इंतजाम का जायजा लेते हैं। हालांकि इंतजामिया ने अपनी तरफ से पूरा जो सेटअप खड़ा करके रखा है इंतजाम के हवाले से, अगर कहेंगे खाने पीने का तो लंगरों की तरफ से, लेकिन बाकी जो भी है पानी, बिजली, सेहत और सफाई और बाकी जो भी इंतजाम है वो इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब देरी है सिर्फ कि मौसम ठीक हो जाए, जो बारिश का सिलसिला है पिछले दो तीन दिन से मुसलसल बारिशें हो रही है, जैसे इनमें ठहराव आएगा उम्मीद है कि 24 तारीख तक दोबारा यात्रा मतलब शुरू करने की उम्मीद इस तरह दिख रही है। बाकी बारिशों का सिलसिला आज दिन भर यहाँ मतलब कल से ही शुरू है और सुबह से पूरे रामबन डिस्ट्रिक्ट में बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को कल ही जो रोका गया था कल, हालांकि एक ही ट्यूब जो हाईवे की दो ट्यूबें हैं और एक एक ट्यूब को रामबन डिस्ट्रिक्ट में और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में एक एक ट्यूब को नुकसान पहुंचा था स्लाइडिंग और शूटिंग स्टोन्स की वजह से, और आज सुबह भी बहुत सारे मकाम पर फिर लैंड स्लाइडिंग हुई है कुछ जगह। इसमें जो ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने बताया कि हिंगनी रामसू है, मंकी मोड़ बैटरी चश्मा है, सहरी रामबन है, समरूली उधमपुर है और मारो कलाका, इन इलाकों में जो प्रॉब्लम है अभी हाईवे पर, और रेस्टोरेशन का वर्क जो है एसएसपी ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे के राजा आदिल, तो उनका कहना है कि रेस्टोरेशन

0: काम चल रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी और अफरादी कुवत को काम पर लगाया गया है। फिलहाल हाईवे बंद है और जो यात्री हैं जो यहाँ बानहाल और रामबन में और जो लंगर वाले हैं सैकड़ों की तादाद में जो सेवादारी कर रहे हैं खिदमत कर रहे हैं यात्रियों की, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब यात्रा दोबारा शुरू है और उनको जो खिदमत है लंगरों पर जो हजारों की तादाद में रोजाना यात्रियों को वहां से खाने पीने का नाश्ते का चाय वगैरह का इंतजाम रखा गया है उसे दोबारा शुरू किया जा सके।
1: जी तस्किन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो यात्रियों में उत्साह था, जोश खरोश का माहौल था, तो बारिश की वजह से उस जोश खरोश के माहौल में तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा है?
0: बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा है, बस मौसमी कुछ लोग तो इससे भी मतलब आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं कि खुशगवार मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। तो जो यात्री यहाँ पर रामबन में अभी जो हालांकि बहुत सारे यात्री वापस चले गए जिनको मैंने पहले ही कहा कि छुट्टियों वगैरह के मसाइल होते हैं जो टाइम निकाल कर आते हैं, लेकिन मौसमी खराबी की वजह से उन्हें ये 2-3 दिन का जो वक्फा है वो ब्रेक लेना पड़ा, तो उस वजह से कुछ लोग वापस गए। लेकिन जो है जो लंगर वाले हैं जो यहाँ पर ठहरे और जो कल तक वापस आए कश्मीर घाटी से जो बालतल और पहलगाम के रास्ते से श्री अमरनाथ गुफा के दर्शन के बाद वापस आए, बहुत खुशी है, जोशो खरोश है, हजारों की तादाद में वापस कल तक लोग गए जो यात्री थे वापस चले गए और मतलब जिन्होंने दर्शन किए हैं। और जबकि 3 दिन से यानी एतवार से यहाँ से कोई काफिला कश्मीर की तरफ रवाना नहीं किया जा सकता मौसमी खराबी की वजह से, जोश व खरोश में कोई कमी नहीं है, बरकरार है और इंतजार कर रहे हैं कि जैसे मौसम ठीक हो सरकार की तरफ से उन्हें हरी झंडी मिल जाए तो वो अपने सफर पर दोबारा जाएंगे और इस जो दर्शन है जो अपना उनका फरीजा है मजहबी फरीजा है जिसके लिए वो वहां पर इबादत के लिए जाते हैं पूजा के लिए जाते हैं, तो उसके लिए उनके दिल में तड़प है कि जैसे ही ये जो ग्रीन सिग्नल मिलेगा रास्ते ठीक होंगे हम मौसम थम जाएगा बारिशें थम जाएगी तो वो उसके लिए तैयार है कि जैसे ही उन्हें ओके मिलेगा तो वो इस सफर पर दोबारा शुरू हो मतलब निकल पड़ेंगे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद तस्किन साहब आपका। और आप ये बता रहे थे कि अगर बारिशें हो रही है लेकिन उसके बावजूद जो यात्री है उनमें उत्साह का माहौल जो है वो बरकरार है, जोश खरोश का माहौल जो उनका उनमें वो बरकरार है और प्रशासन की तरफ से हर कोई सुविधा जो है उनके लिए रखी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद तस्किन साहब आपका। जी ये बात कर रहे थे हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्किन बानहल से, और ये बानहल के हवाले से जो वहाँ के रिपोर्ट है उस हवाले से हमारे श्रोताओं को आगाह कर रहे थे। इनका ये कहना था कि अगरचे बारिशों का सिलसिला जारी है, यात्रा फिलहाल के लिए मुअत्तल है, लेकिन उसके बावजूद जो यात्री है वो इस मौसम से भी आनंद ले रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं क्योंकि खुशगवार मौसम है। और इन्होंने ये कहा कि वो अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनको हरी झंडी मिलेगी प्रशासन की तरफ से ताकि वो एक बार फिर से यात्रा जो है शुरू करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हम और भी संवाददाताओं से बात करेंगे ताकि वो आप तक यात्रा के हवाले से महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी पूछाएंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप जुड़े रहेगा इस ट्रांसमिशन के साथ।

0: एक मेगाहर्ट्ज वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के आराधना चैनल तथा डीटीएच के माध्यम से देश और विदेश तक प्रसारित किया जा रहा है। इस विशेष प्रसारण के दौरान हम आप तक श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी पहुंचा रहे हैं। यात्रा मार्ग की वर्तमान स्थिति, मौसम के हाल के साथ साथ प्रशासन द्वारा जारी ताज़ा सूचनाओं से भी हम आपको अवगत करते रहते हैं। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब। और रहीम रिजवान साहब, हमें आप ये बता दीजिए कि आप इस वक्त जिस पड़ाव पर मौजूद है, ये बता दीजिए हमें कि वहाँ से इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट मिल रही है और यात्रा किस तरह आगे बढ़ रही है, यात्रियों में कैसा उत्साह है और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं, उस हवाले से हमारे श्रोताओं को आगाह कर दीजिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। पहले हम अपने श्रोताओं को मौसम के बारे में सूचना करते हैं। मौसम विभाग के अनुसार बीते दिनों के दौरान लगातार वर्षा हुई एवं आज मौसम में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी आकाश पर बादल छाए हुए हैं, अलबत्ता इस तरह वर्षा होने की संभावना नहीं है। अगर बालतल क्षेत्र की बात करेंगे हम तो बालतल के पूरे क्षेत्र में भी मौसम अब्र आलूदी है और आकाश पे बादल छाए हुए हैं और आज सुबह सवेरे से हल्की हल्की वर्षा हो रही है यहाँ पे बालतल के पूरे क्षेत्र में। तो दर्जे हरारत में भी नुमाइया कमी महसूस हो रही है, ठंडी एवं ताजा हवाएं भी चल रही हैं। तहम आज भी किसी भी यात्री को बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि पांचवें रोज बालतल मुख्य मार्ग से यात्रा को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया क्योंकि वर्षा के कारण पूरी घाटी में सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है। दरियाओं एवं नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने लगी। इस बीच बीती शाम अरहमा गांधरबल के बीच जो नाला बहता है तो यहाँ नजदीकी पहाड़ी से बादल फटने से पानी एवं मिट्टी के रेले बहने लगे जिससे पूरे नाले में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इलाके में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया तो देखते ही देखते पानी के रेले ट्रांजिट कैंप मैनगाम में दाखिल हुए जिससे भारी नुकसान हो सकता था। तहम ट्रांजिट कैंप इंचार्ज SP आबिद रशीद मीर और यात्रा नोडल अफसर यानी ACR गांधरबल डॉक्टर शेख सलाउद्दीन ने पूरी टीम यानी जिला अधिकारी एवं सुरक्षा कर्मियों को लेकर पूरी कार्रवाई में वो जुट गए तथा पूरे कैंप की बचाव के लिए पत्थर और मिट्टी के ठेले नाले के किनारे पर लगाकर पानी के तेज बहाव का रुख दूसरी ओर कर दिया जिसके कारण ट्रांजिट कैंप मैनगांव में कोई नुकसान नहीं हुआ। इस कार्रवाई के दौरान SP आबिद रशीद भी जख्मी हुआ तो हमने उसी वक्त उससे बात की है तो उन्होंने आकाशवाणी को इस हवाले से बताया।
2: ये ज्वाइंट एफर्ट था, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ आना बचाना ही थी और सब कुछ।

0: या जो ऐसे जो बुद्धा साहब यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने जो पत्र कहे या ठेले वगैरह लगाए हैं, तो किस तरह आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जैसे कि चौबीस घंटे आप यहाँ खड़े रहते हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए? पुलिस कमिटेड है हमारे, हम बहुत जल्दी करते हैं और हम दिन बैठे डिजास्टर के लिए रेडी रहते हैं। हमने पहले ही डिजास्टर मैनेजमेंट की ड्रिल की थी, मॉक ड्रिल की थी, और उससे हमें फर्क पड़ा क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन टाइम जो इंक्रीज हो सकता था उस ड्रिल की वजह से चेंज हुआ। ये हमारा काम है और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए तत्पर है और हम हमेशा यात्रियों की और टूरिस्टों की सिक्योरिटी और सुरक्षा के लिए अपना बचाना खड़े हैं और ये हमारा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कृपया वक्त देने के लिए।
1: यात्रियों की सुरक्षा के लिए बार बार जो जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और दीगर एजेंसियां जो हैं उनको चाको चौबंद रखा गया है ताकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो 24 घंटे यहां तैयार रहेंगे, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जो है वो जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। हम अपने श्रोताओं को बार बार ये बताते हैं कि जो यात्रा रूट है उस यात्रा रूट पे दो अहम पड़ाव हमारे पास यहाँ पे है, एक तो ट्रांजिट कम शादीपुरा और ट्रांजिट कम मनगांव। तो ये सदाबंदी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये ट्रांजिट कम मनगांव में कल शाम हमने की थी और इस दौरान आप देखते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं। और आज भी सुबह सवेरे जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि यात्रियों को फिलहाल यहाँ घाटी जो सूरत हाल बनी हुई है वर्षा के कारण, खासकर जो बालतलमुखी मग से यात्रा ट्रैक है उस पर फिसलन पैदा हुई है, तो फिसलन के कारण वहाँ पे चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि महाल भी है, लिहाजा यात्रियों को चाहिए वो फिलहाल घाटी आने से गुरेज करें इस तरह कि बिना पंजीकरण के बगैर अगर वो आए तो पहले पंजीकरण करें। तो इसके लिए जो ही सरकार की जानिब से कोई अहकाम सादिर किए जाएंगे तो तभी उन्हें चाहिए कि वो यहाँ का रुख करें। तो फिलहाल यहाँ की सूरत हाल जो बनी हुई है उस पर जिले प्रशासन की कड़ी नजर है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और एसएसपी गांधरबल सुधांशु दामा कर रहे हैं, तो उनकी निगरानी में बाजाब्ता तो सब कुछ हो रहा है और जिले प्रशासन के द्वारा जो यात्रियों की सुविधाएं रखी गई है उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, सुविधाएं उसी तरह है बल्कि सुविधाएं जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है और यात्रा रूट के हर पड़ाव पर यात्रियों की सहायता के लिए उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी है। जी,
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहीम रिजवान साहब, आप महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी यात्रा के हवाले से हमारे श्रोताओं को दे रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद आपका।

0: व्यवस्थाओं के बारे में हमारे श्रोताओं को बताए।
1: आप बहुत शुक्रिया फैजान साहब, और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा सादर शुभ प्रभात। आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। पहलगाम से पवित्र गुफा तथा आसपास के क्षेत्र में निरंतर वर्षा का क्रम जारी है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुधा को मद्देनजर रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा आज लगातार 5वें दिन भी आरजी रूप से निलंबित रखी गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये निर्णय

0: सबके सब अपनी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। यात्रा नोडल अधिकारी यहाँ रोज वर्चुअल बैठकों के माध्यम से संबंधित सभी विभागों के साथ यात्रा की स्थिति का विस्तृत जायजा ले रही है। आशा है कि मौसम जल्द सुधार में आएगा और यात्रा मार्ग फिर से सुरक्षित घोषित होगा
1: जी
0: और अमरेश्वरी की जो पुण्य धरती है एक बार फिर हर हर महादेव और बम बोली जैसे जो घोषी है वो गूंज उठे। जी
1: जी जी मुझे तारिक साहब आप ये बता दीजिए कि जो इस वक्त तो मौसम में सूरत हाल है, हमने इससे पहले भी जब आपसे रابطہ किया था तो आपने ये बताया था कि जो यात्री हैं उनमें बहुत उत्साह का माहौल है, जोश खरोश का माहौल है उनमें, क्या इस बारिश की वजह से वो उत्साह कम तो नहीं हुआ है?
0: मैं आपको बता दूं, जो यात्रा जागृति बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वो लोग उत्सुक या

0: हुई है, उस हवाले से हमें आगाह कर दीजिए।
1: बिल्कुल, देखिए यहाँ श्रीनगर के पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में जो अमरनाथ जी यात्रियों के लिए ये ट्रांजिट कैंप पांथा चौक में जो एस्टैब्लिश किया गया है, कायम किया गया है, पहले दिन से हम यहाँ से अपडेट कर रहे हैं। चूंकि मौसम खराब होने की वजह से पिछले कई दिनों से यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम बहुत जल्द साफ हो, साजगार हो, बेहतर हो। हालांकि आज सुबह श्रीनगर शहर में हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस वक्त अच्छी खबर ये है कि शहर में अब बारिश रुक चुकी है और हल्की सी धूप भी निकल चुकी है, और ये उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक मौसम में बेहतरी होगी। अलबत्त जैसे कि अभी इतलात आ रही है कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन पहले से ही जो मौसम विभाग है, जो वेदर डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से ये प्रेडिक्शन दी गई थी कि आज शाम तक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जो रीजन्स है, जो एरियाज है या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ मॉडरेट रेनफॉल होगा और कहीं हाई रीचेस में जो हैवी रेनफॉल होगा। और जैसे वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया था कि 72 आवर्स यानी 72 घंटे जो है मौसम खराब रहेगा, और वो आज शाम तक लगभग 7-8 बजे से उम्मीद ये की जा रही है कि मौसम बेहतर होगा, लेकिन इस वक्त श्रीनगर में मौसम में बेहतरी आनी शुरू हुई है और हल्की सी ठंडी हवाएं भी चल रही है, हल्की सी धूप भी निकली है, हालांकि बादल अभी छाए हुए हैं, और यही उम्मीद है कि आज मौसम बेहतर हो जाए पूरी वादी कश्मीर में और बहुत जल्द जो है अमरनाथ जी यात्री जो है वो यात्रा के लिए रवाना हो सके। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि श्रीनगर के इस पांथा चौक ट्रांजिट कैंप में जो यात्री रुके हुए हैं, जो अमरनाथ जी गुफा के पवित्र दर्शन के लिए रवाना किए जाएंगे, मौसम जब तक बेहतर होगा, यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा, तब तक इन यात्रियों को यहीं पर रखा गया है। वो यहाँ पे पिछले 1-2 दिन से स्टे किए हुए हैं और यहाँ इन यात्रियों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सारी फैसिलिटीज या सारी सुविधाएं जो है वो रखी गई है, चाहे वो लंगर में खाने पीने की चीजें हो, कम्युनिटी किचन हो, यहाँ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी हो, यहाँ पे सैनिटेशन का निजाम हो, या जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज है वो इस पांथा चौक ट्रांजिट कैब में अमरनाथ जी यात्रियों के लिए रखी गई है। और इसके अलावा इस ट्रांजिट कैब में ना सिर्फ बेसिक जो फैसिलिटीज है यात्रियों के लिए रखी गई है, बल्कि सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी, आईटीबीपी और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यहाँ पे तैनात है, ताकि यात्रियों की जो सिक्योरिटी है उसको एंश्योर किया जाए। सीसीटीवी कैमराज यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं और यहाँ पे पूरे ट्रांजिट कैंप के इर्द गिर्द जो है गवर्नमेंट की तरफ से सीसीटीवी कैमराज के जरिए से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इसके अलावा जैसे कि हम बार बार अपडेट कर रहे हैं कि जो लोक भवन है, एलजी साहब का ऑफिस जो है, वहां पर भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से यात्रा मॉनिटरिंग सेल एस्टैब्लिश किया गया है और जिसके जरिए से पूरी यात्रा को मॉनिटर किया जा रहा है 24/7। और साथ साथ श्रीनगर के एचएमटी इलाके में भी इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर कायम किया गया है हर साल की तरह इस साल भी, और जहां पर 25 से ज्यादा जो डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, उनका जो अमला है, उनके जो एम्प्लॉयज है, वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं और वो मॉनिटर कर रहे हैं पूरी इस यात्रा को, वेदर को भी, सिक्योरिटी को भी, बेसिक फैकल्टीज को भी, ट्रांजिट कैंप्स को भी, उन जगहों को जहां यात्रीज रुकते हैं, उन रूट्स को जहां से यात्री यात्रा के लिए जा रहे हैं या यात्रा के बाद वापस आ रहे हैं, इवन की

0: जो डूज एंड डोंट्स या इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है मौसम के बीच में, यात्री भी उसको फॉलो करें, और जो बाकी व्यूअर्स हमारे सुन रहे हैं इस वक्त, वो चाहे हमारे टूरिस्ट हो, वो चाहे आम लोग हो, वो भी गवर्नमेंट की एडवाइजरीज और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इमरान नाइकू साहब, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को देने के लिए।
0: शुक्रिया।

यात्रा के दौरान अपना यात्रा परमिट और पहचान पत्र हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि मौसम में अचानक बदलाव हो सकता है, इसलिए रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। और आप सभी से निवेदन है कि यात्रा के दौरान प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, क्योंकि सुरक्षित यात्रा ही सफल यात्रा है। और आप सभी यात्रियों की सुरक्षा, स्वस्थ और मंगल यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं।

सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने देश के विभिन्न हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़, बिजली गिरने तथा भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। बाद में विपक्ष के सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि उनके इस्तीफे के बिना चर्चा नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 16 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगे। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात करेंगे। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के

पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ब्रुनेई के विदेश मंत्री प्रिंस अब्दुल मतीन के साथ बैठक में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डिजिटल नवाचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर

आपसे निवेदन है, कृपया प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित जगह पर बने रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। हर आधिकारिक जानकारी हम समय समय पर आप तक पहुंचाते रहेंगे।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की।
1: तो सरकार ने ये नीट पेपर लीक के बाद जितना कदम उठाया, री एग्जाम करा करके और बिना विलंब बिना देरी का रिजल्ट डिक्लेयर करा के, और भविष्य में ऐसा ना हो उसको भी विस्तार से सदन में देश के सामने में बताना जरूरी समझा है। तो आज फिर हमने देखा तो अपोजिशन पार्टी तो फिर से हंगामा करके चर्चा से भाग रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं, फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से।
0: राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले नीट पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने जवाब दिया था कि वो नीट परीक्षा के पेपर लीक सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री नड्डा ने कहा कि अब कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रखी है। एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैना नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्र के हित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का

दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। ये फैसला सिर्फ आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य और विश्वास की। याद रखिए, प्रकृति के अपने नियम होते हैं और उनका सम्मान करना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा सा इंतजार एक सुरक्षित और सफल यात्रा की ओर बढ़ने का नाम है। आपसे निवेदन है कि प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी और आपका पवित्र सफ़र फिर से आगे बढ़ेगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आस्था को मजबूत रखिए और बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
1: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। खराब मौसम की वजह से यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है, लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक अस्थायी विराम है, यात्रा का अंत नहीं। आस्था का सफर सिर्फ आगे बढ़ने का नाम नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखने का नाम भी है। प्रकृति का सम्मान करना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विश्वास बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और निश्चिंत रहिए। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं, ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा, हम तुरंत उसे आपके साथ साझा करेंगे। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

मरकज नीट पेपर लीक में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि हुकूमत पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक मामले समेत किसी भी मामले पर बहस के लिए तैयार है। भारत ने मनीला में आसियान वजारती मीटिंग में दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में दरियाए सिंध आबी मुआहिदे पर पाकिस्तान की रायजनी को मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है कि मुआहिदा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक सरहद पार की दहशतगर्दी खत्म नहीं हो जाती। ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेल आज शाम शुरू हो रहे हैं। 125 भारतीय एथलीट इसमें हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद को जल्द और सख्त सजा को यकीनी बनाने की खातिर मरकज फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करेगा और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा के मुस्तकबिल का तहफ्फुज बदस्तूर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवानों की बहबूद और मुस्तकबिल से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। वजीर आजम मोदी का बयान नीट पेपर

0: एक मामले पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी तलबा के एहतजाज के दरमियान सामने आया है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने इस सिलसिले में सभी जरूरी इकदाम के लिए मुतालिका हुकाम और अहदेदारान को हिदायत दी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वजीर आजम ने मजीद कहा कि तलबा के मफादात के तहफ्फुज़ के सिलसिले में सिलसिलेवार इकदाम के तहत फैसला किया गया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस फैसले की तारीफ की जिसमें उन्होंने पेपर लीक मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए कसूरवारों के खिलाफ सुनवाई में तेजी लाने और सख्त कार्रवाई को कहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि नौजवानों का दरख्शा मुस्तकबिल और उनकी फलाह दोनों ही मोदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नौजवानों के तई वजीर आजम के अहद को उजागर करते हुए जनाब शाह ने कहा कि ये फैसला उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक की वजह से नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं और ये फैसला एक संगे मील साबित होगा। नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के सबब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी किए जाने के बाद जब लोकसभा की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन ने नीट पेपर लीक मामले पर एहतजाज जारी रखा। प्रिजाइडिंग अफसर दिलीप साइकिया ने बिला रुकावट ऐवान की कार्रवाई चलने देने के लिए अपोजिशन से तआवुन की अपील की। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों खासतौर से कांग्रेस से अपील की कि वो नीट पेपर लीक मामले पर बहस कराने में तआवुन करे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने एक ऐसी तारीख और मुद्दत तक जिस पर अपोजिशन मुत्तफिक हो दोनों ऐवानों में इस मामले पर बहस कराने की खातिर हुकूमत की रजामंदी के बारे में पहले ही मुत्तला कर दिया है। जनाब रिजिजू ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क को यकीन दहानी कराई है कि नीट पेपर लीक मामले के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेजी से इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें तश्कील दी जाएंगी। जनाब रिजिजू ने इस बात पर जोर दिया कि तलबा के मफाद में इस मामले पर बहस जरूरी है और उन्होंने अपोजिशन पर जोर दिया कि वो इस बात का फैसला करे कि बहस का आगाज कब होना है।
1: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या आज, तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा का बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। जब राज्यसभा की कार्यवाही पहली बार मुलतवी होने के बाद 12 बजे फिर शुरू हुई तो अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और तलबा के एहतजाज का मामला उठाया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है जिनमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज के दौरान एक खातून की मौत की बात कही गई है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पुलिस ने वाजे किया कि ये झूठी और गुमराहकुन खबर है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो खातून जिंदा है और उनका इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले में आज रोमानिया के बुखारेस्ट पहुंचेंगी। कोट्रोचेनी पैलेस पहुंचने पर सदर जमहूरिया मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। वो रोमानिया के अपने हम मनसब निकोशोर डैन के साथ वफ सतह की बातचीत करेंगी। बातचीत के बाद कई मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए जाएंगे। रोमानिया के सदर और खातून अव्वल सदर जमहूरिया मुर्मू के एजाज में आज सरकारी इशाइये का एहतमाम करेंगे। कल सदर जमहूरिया मुर्मू भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी के मेम्बरान से मुलाकात करेंगी। सिक्किम की सरकार ने नामची जिले में सुरंग के वाकये की पूछताछ के लिए आईजीपी की जेरे निगरानी एक आला सतह की 4 मेंबरों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की है। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अंदर पेश करेगी। वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने एक आला सतह की कमेटी कायम करने का ऐलान किया था। फिलिपाइन के मनीला में आसियान इलाकाई फोरम की 33वीं वजारती मीटिंग में भारत ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने पर जोर दिया है और एक आज़ाद खुले, सबकी शमूलियत वाले और जवाबित पर मबनी भारत बहरुल काहिल के अपने अज़्म का इयादा किया है। मीटिंग से खिताब

करते हुए वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये फोरम खास तौर से बढ़ती आलमी पेचीदगियों के दरमियान भारत बहरुल काहिल में सियासी और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल की खातिर एक अहम प्लेटफॉर्म है। बहरी सलामती के सिलसिले में वजीर मौसूफ ने कहा कि बहरे हिंद खित्ते में इत्तलात के तबादले का मरकज भारत बहरुल काहिल में बहरी बेदारी पहल और भारतीय बहरिया के असासे तैनात किए जाने जैसे इकदाम पायरेसी सामान और मुनशियात की गैर कानूनी तिजारत से निमटने में मदद के साथ साथ महफूज बहरी तिजारत को भी यकीनी बना रहे हैं। भारत ने दरियाए सिंध के आबी मुआहदे से मुतालिक अकवाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रायजनी को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि जब तक इस्लामाबाद की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को उसकी रियासती पॉलिसी के एक अहम हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहेगा उस वक्त तक इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अकवाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश पाकिस्तान की जानिब से नई दिल्ली पर यह इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद जवाब दे रहे थे कि वो दरियाए सिंध आबी मुआहदे को मुअत्तल रखते हुए पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जम्मू और कश्मीर पर जनाब पी हरीश ने कहा कि मरकज का ज़ेर इंतज़ाम इलाका हमेशा भारत का एक अटूट और कभी अलग न होने वाला हिस्सा रहा है और रहेगा। अमरीका और सऊदी अरब ने एक अहम और तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत खलीजी मुमलिकत को सिविल एटमी प्रोग्राम को फ़रोग देने की इजाज़त होगी। अमरीकी महकमाए तवानाई के मुताबिक इस मुआहदे को पुरमन एटमी तआवुन के मुआहदे के तौर पर बयान किया गया है जो सऊदी अरब की एटमी तवानाई प्रोग्राम में अमरीकी कंपनियों को ज़्यादा रसाई फराहम करेगा। 23वें दौलत मुश्तरका खेलों का आज शाम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज़ हो रहा है। 10 दिनों तक जारी रहने वाले इन खेलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा लेंगी। भारत के 125 एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक में तमगा जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लोवलीना बोरगोहाइन CWG 2026 में भारत की नुमाइंदगी।

0: News. नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नैतिक आह्वान। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज किया, कहा सीमा पार आतंकवाद समाप्त होने तक संधि लागू नहीं रहेगी। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे, प्रतियोगिता में 125 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में शामिल लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। उन्होंने छात्रों के भविष्य की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का ये बयान परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच आया है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे उपायों की श्रृंखला के अंतर्गत लिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के माध्यम से पेपर लीक मामलों में सुनवाई में तेजी लाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। युवाओं के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि निर्णय उन लोगों के खिलाफ है जो पेपर लीक के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार बाधित हुई। लोकसभा की बैठक नीट परीक्षा पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दूसरे स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते अध्यक्ष को सदन की बैठक को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा की कार्यवाही भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष से सहयोग का आग्रह किया।
1: आप जिस हिसाब से सदन में सरसास आते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में सरसा करने के लिए तैयार है सरकार, ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है। सदन ऐसे बाधित करेंगे ये ठीक नहीं है।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों, विशेष रूप से कांग्रेस से नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा करने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष द्वारा तय की गई तिथि और अवधि के अनुसार दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है।
2: सब पार्टी ने ये मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। आज भी पूरा एनडीए पार्टी की ओर से भी फिर से मांग किया है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए। मुझे लगा कल खड़गे जी और बाकी ऑपोजिशन के कुछ नेताओं से मिल करके हमारा उम्मीद थोड़ा सा कायम हुआ था कि चर्चा हो सकता है क्या। आज तो कांग्रेस पार्टी ने कंडीशन लगाया, चर्चा पर बात करके फिर कंडीशन लगा के फिर चर्चा को आप बाधित कर रहे हैं।
0: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आश्वासन दिया।

0: कहा है कि पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार राज्यों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के सभी मामलों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सरकार ने विपक्षी सदस्यों को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि सरकार नीट पर चर्चा करने के लिए तैयार है।
1: सदन हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। आप प्रश्नकाल के बाद आइए, जिस नियमों के तहत भी आप चर्चा करना चाहते हैं, सब दलों के साथ बैठकर हम चर्चा करने के लिए सरकार से भी बात करेंगे, सरकार भी चर्चा करने को तैयार है।
0: राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। पहले स्थगन के बाद जब राज्यसभा दोपहर 12 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर नीट परीक्षा पेपर लीक और छात्रों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने विपक्ष की आलोचना करते हुए उसके आचरण को अत्यंत गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष न तो चर्चा चाहता है और न ही सदन को चलने देना चाहता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्षी दल नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर बार बार चर्चा से भाग रहे हैं और अपना रुख बदल रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के लिए छात्रों का कल्याण सर्वोपरि है। विपक्षी दलों पर छात्रों के मुद्दों पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए श्री चौहान ने कहा कि वे केवल अराजकता फैलाना चाहते हैं और संसद के कामकाज में बाधा डालना चाहते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, छात्रों के कल्याण से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है और इसलिए जिनने पेपर लीक जैसा अपराध किया है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा, मुकदमा चलेगा, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, लेकिन विपक्ष को बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, नीट से भी लेना देना नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं, लेकिन एनडीए भारतीय जनता पार्टी सरकार चर्चा चाहती चर्चा। मैं प्रतिपक्ष से आग्रह करता हूँ कि आए सदन के अंदर और चर्चा करें।
0: एनडीए और विपक्षी सांसदों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर स्तर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
3: एनडीए की सरकार पूरी तरह से छात्र और युवाओं के भविष्य के लिए हर स्तर पर चर्चा को तैयार है, पर राहुल गांधी और कांग्रेस और संपूर्ण विपक्ष चर्चा से भाग रहे हैं। ये केवल स्टोन पेटर्स के रूप में युवाओं को देखते हैं, पर भारत और एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी का विजन है कि हम पूरी तरह से युवाओं को उनके सुनहरे भविष्य के बनाने के लिए संकल्पित है।
0: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार को छात्रों की मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ने आज सुबह चेन्नई स्थित राज्य कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। संवाददाताओं से बातचीत में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नैना नागेंद्रन ने कहा कि कांग्रेस नीट के खिलाफ छात्रों को गुमराह कर रही है और राष्ट्रहित के विरुद्ध युवाओं को भड़का रही है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्पष्ट किया कि ये जानकारी झूठी और भ्रामक है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि महिला की हालत स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। पुलिस ने नागरिकों से अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करने और उसे साझा न करने का आग्रह किया है। दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद हैं। राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। फिलीपींस के मनीला में आयोजित 33वें आसियान क्षेत्रीय मंच के मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान किया और एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी तथा नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि बढ़ते वैश्विक तनाव के इस दौर में ये मंच हिंद प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। भारत ने सिंधु जल संधि पर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहेगा, तब तक संधि को बहाल करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पर्वथा

0: रेनी हरीश ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित रखकर पानी के दुरुपयोग के आरोप पर ये जवाब दिया।
1: Our position on the Indus Water Treaty remains clear.
2: सिंधु जल संधि पर हमारा रुख स्पष्ट और सुसंगत बना हुआ है। जब सीमा पार से आतंकवाद को नियमित रूप से एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है तो आपसी विश्वास सद्भावना के आधार पर सहयोग की उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: Is regularly deployed as an instrument of state policy.
0: जम्मू कश्मीर मुद्दे पर श्री हरीश ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश हमेशा से भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज रोमानिया पहुंचेंगी। इस दौरान वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डॉन और अंतरिम प्रधानमंत्री इलिये बुलोयान से मुलाकात करेंगी। उनका रोमानिया भारत संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों के साथ मुलाकात का भी कार्यक्रम है। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की दौरों की अंतिम चरण में आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट पहुंचेगी। कोट्रोसेनी पैलेस पहुंचने पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। श्रीमती मुर्मू रोमानिया के राष्ट्रपति निकोजो डॉन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की बात करेंगी। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। रोमानिया के राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति मुर्मू के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन करेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू कल भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी और भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत करेगी। रोमानिया यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में आगामी वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं शुभश्री महापात्र बुखारेस्ट रोमानिया से।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ आज स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हो रहा है। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग लेंगी। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहाइन राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। भारतीय दल में पैरा एथलेटिक्स सहित 125 सदस्य शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल मंत्रियों की बैठक के दौरान राष्ट्रमंडल की नवनिर्वाचित महासचिव शर्ली अयरकोर बोर्चवे से मुलाकात की। बैठक में डॉ. मांडविया ने खेलो भारत नीति और अस्मिता लीग का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दोनों पहल जमीनी स्तर पर खेलों को मजबूत कर रही हैं। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में आज तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण और मध्य गुजरात में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। गृह मंत्री अमित शाह ने बारिश से प्रभावित गुजरात को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जमीन स्तर पर राहत कार्यों की निगरानी के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और सचिवों को तैनात किया गया है। असम में लगातार हो रही बारिश से हालत बेहद खराब है। कल बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 10 और लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 41 हो गई है। राज्य के 40 राजस्व सर्कल में 64 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से 250 किलोमीटर लंबा जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी तरह प्रभावित है। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। इसी दिन वर्ष 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। बाद में वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई और 1956 में इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जिम्मेदार लोगों को त्वरित और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करेगी। आश्वासन दिया, देश के युवाओं का कल्याण और भविष्य सुरक्षित करना सर्वोच्च प्राथमिकता। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक सहित सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेपर लीक मामले सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। आसियान बैठक में भारत का आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति का आह्वान और राष्ट्रमंडल खेल आज से स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का

0: ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वीव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, हम लगातार अपने संवाददाताओं और संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, अभी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं एस तारिक अनंतनाग से हमारे संवाददाता हैं। इनसे कुछ नई अपडेट्स लेने की कोशिश करते हैं। जी एस तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: बहुत शुक्रिया सबरीना जी। इस विशेष प्रसारण में जो भी मौसम के हवाले से बात करना चाहूंगा, तो आज श्री अमरनाथ जी यात्रा के 21 दिन पूरे हो चुके हैं। पहलगाम से पवित्र गुफा तथा आसपास के क्षेत्र में निरंतर वर्षा का क्रम जारी है, तो इस समय जो आज रात भर कश्मीर घाटी में वर्षा का क्रम जारी रहा। पहलगाम तथा इसके आसपास के क्षेत्र में इस समय भी वर्षा हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज भी दिन भर गरज चमक के साथ वक्फे से वर्षा होने की संभावना है। शाम तक वर्षा की तेवर में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन वातावरण धुंधला रहेगा, हवाएं हल्की रहेंगी और विभिन्न दिशाओं से चलेगी। इस समय पहलगाम का तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज है, जबकि वातावरण में नमी की मात्र लगभग 75% रहने का अनुमान है। पहलगाम के क्षेत्र से बहने वाली लदर नदी में जल स्तर बाढ़ घोषणा रेखा से ऊपर पहुंच चुका है और मौजूदा जल स्तर लगभग 1.5 मीटर दर्ज किया गया है। निरंतर मूसलाधार वर्षा के कारण इससे जुड़े शिशनाग नाला, बेतावेली, आवरा नाला तथा अन्य जल धारों में भी जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई स्थानों से बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी हुई है। प्रशासन के अनुसार स्थिति निरंतर मैं है और सभी संबंधित विभाग पूरी तरह से सूचित है। इधर अनंतनाग और श्रीनगर में दरिया जहलीम का जल स्तर भी खतरा रेखा और चेतावनी रेखा से तकरीबन नजदीक है, लेकिन वाटर लेवल इंक्रीज हो रही है, जो कि इस वक्त 18.5 तक पहुंच चुकी है, जो चेतावनी रेखा से सिर्फ 2.5 कम है। इस तरीके से जो अगर दरिया जहलीम का जल स्तर भी सुरक्षित सीमा के अंदर है, तहम निरंतर वर्षा के कारण श्रीनगर के निचली क्षेत्रों में जल है कि वो स्थिति बनी हुई है। जल शक्ति विभाग ने विशेष रूप से दक्षिण कश्मीर यानी साउथ कश्मीर के निवासियों से अपील की है कि वो उतने नालों, पड़ों और नदी और आलिए जल धारों की सिमट जाने से परहेज करें। ये एडवाइजरी यात्रियों के लिए भी है, क्योंकि हम इस बात से बड़े मुतमईन है कि यात्री इस वक्त जो हमारे पास कश्मीर में है वो सबसे ज्यादा जिनकी तादाद 8,000 तक है वो इस वक्त नुनवन आधार शिविर में कयाम पजीर है, वो वहाँ बिल्कुल महफूज है। उनके जितने भी जरूरतें हैं वो पूरी की जा रही है। अलबत् जो उनके दिल में है कि हम कब बाबा के द्वार जाएं, तो वो एक अलग चीज है, वो एक अलग दिशा है। तो लेकिन हम अगर जब तक हम उनसे बात कर चुके हैं तो उन्होंने हमेशा जो प्रशासन की ओर से जो भी उनके लिए हिदायत दी गई है वो इस पे अमल कर रहे हैं। वो बड़े मुतमईन तरीके से वह हर एक सुविधा के साथ बैठे हैं। तो इस तरीके से जो हम बात करेंगे कि जल यातायात के लिए भी बात करें तो यातायात के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अभी यातायात के लिए बंद है, क्योंकि कई जगहों पे ये कुछ पत्थर गिराए हैं, कुछ पस्सियां गिराई हैं, तो रास्ता बंद हो चुका है। एहतियातन और ज्यादा इसको अभी बंद कर दिया गया है। तो अभी जो आने वाले दिनों की बात है तो इसमें अभी मुख्य मौसमियात ने फिलहाल वाटर लेवल की बात की तो संगम में 21 और 25 की जो दरमियाना है ये डेंजरस लेवल है। इसका मैंने बताया पामपुर में भी इस तरीके से 4.1 अभी मीटर अभी यहाँ पानी चढ़ चुका है, जो सिर्फ 4 मीटर तक अभी 4 फुट तक अभी वो कम है, तो डेंजरस जोन है। इस तरह मुंशी रामबाग श्रीनगर में भी तकरीबन 2-3 फीट की कमी है, असम में तकरीबन 4-5 फीट की कमी है। अगर देखा जाए वाटर और सारी चीजों के जरिए अगर हम देखें तो यही इंकशाफ हो रहा है कि वाटर लेवल बढ़ रही है, लेकिन अभी जो मौसमियात की जानिब से हमें और एडवाइजरी मिली है उसमें ये चीज भी है कि शाम 24 घंटे के अंदर अंदर जो वाटर लेवल है वो कम होती जाएगी, क्योंकि दोपहर के बाद जो एडवाइजरी मिली है कि बारिश कम हो रही है। लेकिन ये सिलसिला अभी 30 तारीख तक है, जिसमें खासकर साउथ कश्मीर के लिए जो बताया गया है वो है 28 से लेके 30 तक ठीक ठाक मॉडरेट वर्षा के साथ साथ हैवी बारिशें भी होंगी, लेकिन तब तक थोड़ी मॉडरेट होगी कल से। तो इस हवाले से हम दुआ करते हैं कि मौसम बेहतर हो और जो हमारे पास मेहमान पड़े हैं, जो यात्री पड़े हैं, वो अपने बाबा के दर्शन प्राप्त करें। तो इस तरीके से जो इंतजामिया है, जो यात्रा इंतजामिया है, वो बराबर इस पे नजर बनाए रखे हुए हैं। जब तक ना मौसम की बेहतरी होगी तब तक किसी भी यात्री को आगे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। जी
1: जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि यात्रा दोबारा शुरू होने को लेकर कोई नया अपडेट या कोई ऐसी संभावना सामने आई है?
4: अभी तक जो मैंने क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक ही चीज पे निलंबित है वो ये है कि मौसम की जो एडवाइजरी थी, जो बिगड़ते हुए मौसम को देखते हुए श्रद्धालुओं की जो सुरक्षा और सूर्योदय की मद्देनजर रखते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा जो आज भी निलंबित रही हो इसी बात पे रही कि वो मौसम बिगड़ते मौसम की बात है। तो बिगड़ते मौसम पे मैंने जो अपडेट किया था इस
1: जी
4: तरीके से लगता है शायद शायद 30 तारीख तक अभी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि मौसम ठीक हो सकता है, क्योंकि बीच
1: जी
4: बीच में बारिश होगी, कभी कम कभी ज्यादा। तो बारिश से इन पहाड़ों के लिए, इन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहां फिसलन पैदा होती है। लेकिन
1: पहलगाम,
4: सरकारी
1: अगर
4: तौर
1: हम
4: पे अभी
1: पहलगाम मार्ग की बात करें तो वहां की वर्तमान स्थिति क्या है?
4: बिल्कुल पहलगाम में कंटिन्यूअस वही पूरा जिला की तरह बराबर वहां भी बारिशें हो रही है, वहां भी जो बारिशों का सिलसिला कल से ही जारी है। और इस वक्त जो हम मालूम कर चुके हैं कि जो हमने सरकारी अधिकारियों से भी बात की है, तो उनका कहना है कि अभी जो ट्रैक है, ट्रैक में अभी हर जगह लगभग फिसलन है,
1: जी
4: जिसको बीआरओ देख रही है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले देख रहे हैं। अभी पूरे कश्मीर की पूरी घाटी की से लेके बल्कि जम्मू से भी ये खबरें आ रही है कि बारिशों और पानी का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो दरियावल नदर है जो पहलगाम से बहता है, तो उसकी वजह से जो जहलम की इंक्रीजमेंट भी बढ़ गई है। तो उस हवाले से अभी थोड़ी कहीं कहीं पे पहलगाम की सड़कों पे भी उस नदर का पानी आ चुका है, लेकिन यातायात जारी है, लेकिन कुछ पानी चढ़ चुका है। तो इसलिए अभी अगर मौसम रुकता भी है तब भी 2 दिन लगते हैं जो ट्रैक है उसको ड्राइव होने में, क्योंकि ये फिसलन भरा रास्ता है, ऊंची पहाड़ी है, हिमालयी एरिया है, तो ये कोई आम रोड नहीं है जिसमें जल्द अज जल्द हम चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ वेट करना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है अभी कुछ जाने के भी है कोई इशारा, या सरकारी तौर पर तो कोई ऐलान हुआ भी नहीं है। तो
1: जी
4: ये सिर्फ मौसम पर निर्भर है कि मौसम कब बेहतर हो जाएगा और यात्रियों को आगे जाने की अनुमति मिल जाएगी। बिल्कुल,
1: खाने पीने की सुविधा किस प्रकार की है यात्रियों के लिए?
4: जो जो भी हमारे पास यात्री इस वक्त निर्मल बेस के आधार शिविर में बैठे हैं 8,000 के करीब, उनके लिए तकरीबन जो रहने के लिए वहां कयाम करने के लिए तकरीबन 600 वाटर प्रूफ और विंड प्रूफ टेंट लगे हुए हैं। उसके अलावा 2 बड़े हट्स हैं जिनमें तकरीबन 200-300 लोग आते हैं। उसके बगैर दो दो 13-12 हटे और भी है जो सिंगल हटे सिंगल स्टोरीज है। तो उसके बगैर जो खाने पीने की हम व्यवस्था करें तो खाने पीने के लिए तकरीबन 13 लंगर वहाँ बिल्कुल इंटैक्ट है, 13 उनके लिए रखे गए हैं जिनमें तमाम तर की जो खाने पीने की चीजें मौजूद है। अगर हम उनको सर्दी लगने की बात करें तो अगर उनमें ठंड मौसम होती तो उनके लिए वस्त्र भी वहाँ दुकानें लगी हुई है, छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं जहाँ तमाम कपड़ों जो मौसम के मुताबिक कपड़े उनको चाहिए वो मिलेंगे, उनके जूते मिलेंगे, उनको हर एक चीज मिलेगी, उनको कोई भी एक माहौल सा है वहाँ अभी ननवन बेस कैंप पे ऐसा कि जैसा कोई मेला लगा हुआ है, एक एरिया जैसा है जैसे कि वो घर में बैठे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे इंतजाम के साथ में किसी भी चीज की कमी नहीं है वहाँ। जी
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, फिर से आपके साथ बात करेंगे जो ही कोई अपडेट मिलता है आपको। ये थे एस तारिक हमारे संवाददाता अनंतनाग से। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। हम आपको याद दिलाते कि हम लगातार अपने संवाददाताओं से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जावेद मेहराब जी, जम्मू से हमारे संवाददाता है। कुछ नए अपडेट्स जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: जी, बहुत शुक्रिया।
0: क्या कुछ नए अपडेट्स हैं मौसम के हवाले से और मार्ग के हवाले से?
1: जी देखिए, मौसम तो बिल्कुल अपने उफान पर है, लगातार बारिशें हो रही हैं। कल दिन भर भी रही और आज सुबह से भी बराबर बारिशें जारी है। कल शाम होते होते बारिश रुक गई थी, लेकिन रात को फिर अचानक बादल फिर से आ गए और उसके बाद फिर बारिशें फिर से शुरू हो गई और आज दिन में भी बारिशें लगातार जारी है। और आठवां सावन है आज। सावन समझ लें आप कि बारिशें जब हो तो सावन समझ लें आप घूम रहा है जम्मू में, जम्मू पूरे संभाग में। और इस मौसम में यात्रा स्थगित जरूर है, लेकिन श्रद्धालुओं का जोश जज्बा कायम है। लगभग 7,000 से 8,000 जो श्रद्धालु हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हैं, लेकिन मौसम बस उसमें बीच में बाधा बन रही है। और मौसम का इंतजार है, अनुमति का इंतजार है प्रशासन की तरफ से, लेकिन मौसम जब तक साफ नहीं होगा, जब तक सड़क की हालत बिल्कुल उनको स्पष्ट नहीं की जाएगी, तभी आगे अनुमति मिलेगी, तो ये प्रशासन का कहना है। तो इस बीच जो है सुबह से ही लगातार बारिशें, जैसा मैं कह रहा हूँ, तेज बारिशें हैं जिससे शहर तरबतर है। यहाँ सड़कों, चौक चौराहों पर जल भराव हो गया है और अभी मौसम का रुख पूरी तरह से विपरीत चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर

आवाजाही जो है वो मुतासिर हुई है, बाजारों में रौनक ना के बराबर है। स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालु भी, जहाँ स्थानीय लोग घरों में अंदर बैठे हैं, दुकानों के अंदर बैठे हैं, वहीं श्रद्धालु अपने अपने ट्रांजिट कैब्स या ज्यादा से ज्यादा यहाँ के जो स्थानीय मंदिर हैं उनके आसपास ही नजर आते हैं, क्योंकि खास तौर पर सावन के इस महीने में पूजा अर्चनाएं मंदिरों में खास तौर पर की जाती हैं। ये जो सावन का महीना है ये पूजा अर्चनाओं का महीना होता है, और इसमें खास तौर पर तमाम तरह की जो पूजा अर्चनाएं हैं, भजन है, कीर्तन है, भगवान शिव के नाम के भजन है, वो सब किए जाते हैं। तो मंदिरों में यहाँ रश है, लेकिन उनमें भी ज्यादातर श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से शहर में लोग घरों के अंदर ही बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ टेम्परेचर जो है यहाँ का जो दर्जा हरारत है वो भी कम हो गया है। जो गर्मी थी, उमस थी, वो बिल्कुल ना के बराबर है अब। और बिल्कुल जो वातावरण है वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन सिर्फ बारिश की वजह से यहाँ की नदी, जो खास तौर पर शहर के अंदर ही तवी नदी है, वो अपने उफान पर है। और इस बीच जो श्रद्धालुओं का कहना है कि मौसम खराब होने से यात्रा जरूर रुकी है, लेकिन बाबा बर्फानी के स्थान तक पहुंचने का उनका संकल्प पहले की तरह मजबूत है, और वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि जैसे ही प्रशासन की अनुमति मिलेगी वो पवित्र गुफा की तरफ उसी जोश और जज्बे के साथ रवाना होंगे। और इस बीच जो है पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है खास तौर पर जो श्रद्धालु जम्मू के निवास स्थान भगवती नगर में है वो लगातार तेज बारिश के दरमियान यहाँ के परिसर में बाबा बर्फानी के जयघोष लगाकर जोशो खरोश को बनाए हुए हैं। यहाँ जैसे मैंने कहा कि भजन, कीर्तन, योगा, तमाम तरह की सुविधाएं यहाँ हैं। यहाँ भोजन, समय पे भोजन मिलता है, सारी चीजें इंटैक्ट है, लेकिन सिर्फ यही है कि जल्द से जल्द श्रद्धालु चाहते हैं कि उन्हें ये मौसम साफ हो और वो बाबा बर्फानी के दर्शन की तरफ निकले। उन्हें भरोसा भी है कि मौसम जल्द ही साफ होगा और यात्रा फिर से शुरू होगी, लेकिन इस बार जो है मौसम लगातार जो है खराब है, लगातार बारिशें चल रही हैं। स्थानीय लोग भी डरे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ के आने का खतरा बन रहा है लगातार, लेकिन अभी तक जो है जो स्थिति है वो बिल्कुल नियंत्रण में है। प्रशासन, अधिकारी, कर्मचारी सारे पूरी तरह से अपनी तरफ से या स्वयंसेवी संस्थाएं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बाजारों में, जिस तरह से गाड़ियों में मेगाफोन्स पर बाजाब्ता ऐलानात किए जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने आप को सेफ रखें, अंदर रहें, बारिश में नदी की तरफ ना जाएं, नालों की तरफ ना जाएं, ये कार्रवाइयां भी चल रही हैं। उसके साथ साथ श्रद्धालुओं के मुताबिक आधार शिविर पर उनके रहने का, खाने का, जैसे मैंने कहा कि सारी अन्य जरूरी सुविधाओं का अच्छा इंतजाम भी है और समय पर खाना मिल रहा है, ठहरने की व्यवस्थाएं बेहतर हैं। इसके अलावा चिकित्सा, सुरक्षा को भी लेकर पर्याप्त इंतजाम है और किसी भी तरह से यहाँ कोई परेशानी नहीं है। और इस बीच यहाँ जम्मू में कल पूरे दिन भी बारिश रही जैसा मैंने कहा, और देर शाम रुकी थी, लेकिन आज भी आसमान पर घने बादलों के साथ साथ बारिश लगातार चलती रही और रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से शहर की रफ्तार जो है वो पूरी तरह से रुक गई है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ जम्मू की नदियां, जिनमें शहर के बीचों बीच तवी नदी अपने उफान पर है, वहीं अगर हम शहर के बाहर की बात करें, कठुआ की, विजयपुर की, उस तरफ उस एरिया की, वहाँ कठुआ में रावी और उज नदी जो है अपने उफान पर है और खतरे के निशान तक पहुंच गई है। यहाँ पूरे दिन प्रशासन दूसरी तरफ अखनूर में जो स्थित चनाब नदी है उसका भी जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। रात को उसका जल स्तर थोड़ा कम था, लेकिन आज सुबह लगभग 35 फुट के करीब जल स्तर पहुंच गया है। तो इस तरह से कुल मिलाकर तीर्थयात्रियों को यहाँ अभी इंतजार ही है जो उन्हें करना पड़ेगा और सब्र के साथ करना पड़ेगा, जब तक कि मौसम विभाग से कुछ सुधार के आसार नहीं मिलते और जिसके तहत बारिश में तो थोड़ी कमी आ जाती और जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है
वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता और सुरक्षित तौर पर

0: तरह से श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करते आए हैं, आगे भी जल्द ही मौसम ठीक होगा। हम सबकी ये दुआ है, कामना भी है और पूरी तरह से उम्मीद भी है कि जल्द ही मौसम साफ होगा और तीर्थयात्रियों को बाबा बर्फानी की घाटी की तरफ इजाजत मिलेगी रवाना होने की। जी
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जम्मू में रुके जितने भी श्रद्धालु हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा?
0: देखिए, सिर्फ मैं देखिए ये जो मौसम होता है, ये सावन में अक्सर ऐसा, मतलब जो मौसम है बारिश का, ये होता ही है, इसमें कोई दूसरी उम्मीद तो नहीं है। लेकिन उम्मीद सिर्फ ये होनी चाहिए, जोश जज्बा जिस तरह से कायम रखा है श्रद्धालुओं ने, और उन्हें वो जोश जज्बा कायम रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो यात्रा है ये आस्था की यात्रा है, ये सबर की यात्रा है। ये हमें सिखाती है कि किस तरह से कठिन हालात में आपने खड़े रहना है, किस तरह से कठिन सिचुएशंस में आपने अपने आप का धैर्य बनाए रखना है, धैर्य को बनाए रखना है। और यात्रा का इंतजार तो है, और इंतजार के बाद जो मजा आता है उसका मजा कुछ अलग होता है। इसलिए मेरी तरफ से तो मैं यही कहूंगा कि जो हालात है वो अभी विपरीत जरूर हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही ये हालात जो है बिल्कुल बेहतर होंगे और मौसमी हालात बदलेंगे और तीर्थयात्रियों को और श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के द्वार की तरफ इजाजत मिलेगी और वो बिल्कुल रवाना भी होंगे और फिर से दर्शन करेंगे और सावन के महीने में ही पहुंचेंगे, ऐसा सबकी उम्मीद है।
1: जावेद मेहरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
0: बहुत शुक्रिया।
1: ये थे जावेद मेहरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, हमारे संवाददाता जम्मू से। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
2: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है। ये सिर्फ एक अस्थाई विराम है। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा और प्रशासन की अनुमति मिलेगी, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। याद रखिए, धैर्य भी आस्था का एक रूप है। आज का ये छोटा सा इंतजार कल की उन यादगार घड़ियों को और भी खास बना देगा। और बहुत जल्द आप कश्मीर की हरी भरी वादियों, खूबसूरत मैदानों और कल कल बहती नदियों और झरनों के मधुर सरगम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपना पवित्र सफर फिर से शुरू करेंगे। तब तक प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और एडवाइजरीज का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। हम इस पूरे प्रसारण के दौरान मौसम, यात्रा और यातायात से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। श्रोताओं, आपको याद दिलाते चलें कि यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का ये विशेष प्रसारण।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: आपको अकेले ट्रैक नहीं करना चाहिए, हमेशा एक समूह में यात्रा करें और सुनिश्चित करें कि समूह में शामिल सभी लोग आपके सामने या पीछे चल रहे हैं, हमेशा आपकी दृष्टि में रहें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप उनसे अलग ना हों।
0: किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जाए, इसके लिए आपको अपने समूह के किसी सदस्य जिसके साथ आप यात्रा कर रहे हैं का नाम, पता और मोबाइल टेलीफोन नंबर का एक नोट अपनी जेब में जरूर रखें। साथ ही अपना यात्रा परमिट या कोई और पहचान पत्र भी अपने साथ रखें।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान साहब। रहीम रिजवान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद आपका।
0: क्या कुछ अपडेट्स है मौसम के हवाले से, यात्रा के हवाले से?
1: मौसम के बारे में हम अपनी श्रोताओं को ये बताना चाहते हैं कि बालतल के पूरे क्षेत्र में बालतल से पवित्र गुफा तक आकाश पे बादल छाए हुए हैं, वर्षा भी हो रही है। लगातार वर्षा के कारण जो यात्रा ट्रैक है उस पे फिसलन भी पैदा हुई है और जो भी वहां पे सेवादार है उन्होंने लगभग अपनी लंगर वगैरह या दुकानें जो लगाई गई है बिल्कुल सुबह सवेरे से जो विजुअल सब तक पहुंचे बंद पड़े हैं क्योंकि यात्री वहां पे नहीं है और यात्रा ट्रैक जो है उस पर फिसलन पैदा हुई है। लगातार वर्षा हो रही है, लगातार वर्षा होने से जो तापमान है उसमें काफी कमी देखने को मिल रही है और दर्ज हरात में कमी देखने से सर्दी भी महसूस हो रही है, न कि सुबह शाम बल्कि दिन में भी आज थोड़ी थोड़ी सर्दी भी वहां पे महसूस हो रही है और इस तरीके से वर्षा हो रही है पूरे जिले में भी। अगर हम यहाँ शादीपुरा ट्रांसिट कैंप या मणिगांव ट्रांसिट कैंप की बात करेंगे तो वर्षा के कारण यहाँ भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है और यात्रा बिल्कुल अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है और किसी भी यात्री को फिलहाल गुफा की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है क्योंकि अगर हम जम्मू भगवती नगर बेस कैंप की बात करेंगे तो वहां से ही किसी भी यात्री को घाटी की ओर आने की अनुमति नहीं दी जाती है और इस तरह हम कह सकते हैं कि सिक्योरिटी के अगर से कड़े प्रबंध किए गए हैं। सिक्योरिटी जो सुरक्षा कर्मी है वो चौबन चारों ओर नजर आ रहे हैं लेकिन यात्रा कॉन्वे जो है उसको आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से यहाँ घाटी की ओर। इसलिए बालतल मुखी मार्ग से जो तीर्थ यात्री हैं

0: उनको फिलहाल आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो फिलहाल यात्रा बंद है, सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा जिला प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि फिलहाल मौसम की खराबी के कारण किसी भी यात्री को बालतल बेस कैंप से आगे पवित्र गुफा की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों के लिए हर पड़ाव पर उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध रखी हैं, और हर विभाग के अधिकारी, जिले प्रशासन के हर विभाग के अधिकारी बालतल बेस कैंप से पवित्र गुफा तक अपनी ड्यूटी जो है वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं, अपने फराइज निभा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो सुरक्षा कर्मी है वो भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे बिल्कुल तैनात है, चाकू चौबंद रखे गए हैं ताकि किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन खराब मौसम के कारण जब यात्रियों को वहां जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो फिलहाल वो भी वहां पे अलर्ट रहे हैं, तो मौसम में बेहतरी आते ही फिर यात्रा शुरू की जाएगी और देश के विभिन्न भागों से आने वाले श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन के आला अफसरान जो है बालतल में मौजूद है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जैतिन किशोर और SSP गांधरबल सुधांशु धामा बाजाबता तौर पूरी निगरानी कर रहे हैं, और बीच बीच में सूबाई इंतजामिया के सिविल और पुलिस के आला अफसरान यहाँ विजिट करके जो इंतजाम है उसका बाजाबता तौर जायजा ले रहे हैं, और यात्रियों के लिए जो प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि इजाफा होता जा रहा है, और साथ ही यात्रा रूट के हर पड़ाव पर जो सुरक्षा कर्मी है वो बिल्कुल चाकू चौबंद नजर आ रहे हैं, अलर्ट रखे गए हैं, और इस दौरान कोई भी डिजास्टर हो या कोई भी सूरत हाल ऐसी पैदा हो, चाहे वर्षा के कारण, तो उसे निमटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, CRPF, BSF, SSB, IGBP और बीकन RCC 122, वॉलंटियर्स, SDRF और NDRF की टीमें जो है वो बिल्कुल मुतहरिक रखी गई है, पूरे जो पूरा पड़ाव जो है बालतल मार्ग से पवित्र गुफा तक, वहां तमाम एजेंसियां चाकू चौबंद इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौसम के कारण ये निर्णय जो लिया है बेहतरीन निर्णय लिया है, क्योंकि वर्षा काफी हो रही है और आकाश पे काफी बादल छाए हुए हैं, और घाटी में भी जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है, इससे यही साफ जाहिर होता है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो प्रशासन ने निर्णय लिया है बहुत ही अच्छे निर्णय लिया है, क्योंकि यात्रा इस वक्त वहां जारी नहीं रह सकती है, और यात्रियों को ऊंचे पर्वतों के बीच ये जो 14 किलोमीटर का कठिन रास्ता है इस पे सफर करना बहुत ही मुश्किल है। जी
1: जी रहीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि बालतल मार्ग की इस समय वर्तमान स्थिति क्या है?
0: बालतल के पूरे क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो वर्षा के कारण एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि जहां सभी लोग खामोश बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, जो भी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हो या सेवादार हो या दुकानदार हो या घोड़े वाले हो, तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं, क्योंकि उनके लिए काम भी नहीं है, जिस काम के लिए वो वहां पहुंचे थे वो कर नहीं सके, वर्षा के कारण उसमें अड़चने पड़ गई है, लिहाजा बिल्कुल खामोश एक सा समा सा देखने को मिल रहा है यहाँ बालतल के क्षेत्र में और पवित्र गुफा तक। अलबत्ता जो सेवादार हैं या अधिकारी हैं जितने भी इसके लिए तैनात किए गए हैं यात्रा के लिए, वो तो बिल्कुल मुतहरिक है वहां पर। जी,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। अपडेट आता है जब कोई नया, तो हम दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे।
0: बेशक बेशक।
1: ये थे गांधरबल से हमारे संवाददाता रहीम रिजवान। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण, FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेज OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, बने रहिए हमारे इस विशेष प्रसारण के साथ।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर के आराधना चैनल तथा डीटीएच और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी की श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुँचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा एकमात्र हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करता।

0: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बालीतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज़ ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मोहम्मद तस्कीन, ये संवाददाता है हमारे रामबन से। इनसे आज के मौसम के और जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनका जो नया अपडेट है वो जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है तस्कीन साहब।
1: जी बहुत शुक्रिया। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो आज बिल्कुल दूसरे रोज भी मजमुई तौर बंद रही। आज सुबह से ही बारिशों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है, जिसकी वजह से जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे मुतद्दिद मुकामात पर, यानी अगर कहेंगे तो एक दर्जन के मुकामात पर बड़ी या छोटी पस्सियों और शूटिंग स्टोन्स की वजह से बंद हुई है और अभी भी बंद है, और किसी किस्म के भी ट्रैफिक को आज हाईवे पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। बारिशों का सिलसिला भी जारी है और उसके साथ साथ जो नदी नाले हैं, जो भी इस रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, चनाब दरियाई चनाब है, नाला बिस्लड़ी है, उसके अलावा जो छोटे छोटे नाले हैं सब में पानी की सतह जो बढ़ गई है और मजमुई तौर पर जो आज किसी भी किस्म के ट्रैफिक को शाहरा पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। मुतअद्दिद मुकामात ऐसे जहां पर फ्रेश लैंड स्लाइड्स हुई है, पत्थर गिर आए हैं हाईवे पर। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ट्रैफिक पुलिस जो है वो कोशिश में लगे हैं कि रेस्टोरेशन का काम साथ साथ किया जाए और किया भी जा रहा है, लेकिन जो मुसलसल बारिशें हैं उससे जो रेस्टोरेशन का काम है कहीं ना कहीं वो मुतासिर हो रहा है, क्योंकि मुसलसल पत्थर गिर रहे हैं, पस्सियां गिर रहे हैं और बारिश हो रही है, उस वजह से इस काम में भी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें भी दुश्वारियां पेश आ रही है। फिलहाल बारिशें हो रही है और जैसा कि आपको मालूम है कि आज चौथा रोज है कि यात्रा जम्मू से जो है मुअत्तल कर देना पड़ी है मौसमी खराबी की वजह से, और आज कश्मीर से भी कोई जो दर्शन के बाद वापस गाड़ियां आती थी, यात्री आते थे, उनकी भी कोई कानवाई वापस नहीं आई क्योंकि हाईवे बंद था। हालांकि कल तक जो जम्मू से बंद किया गया था एतवार से, लेकिन कल तक कश्मीर से मुसलसल जो दर्शन के बाद श्री अमरनाथ यात्री वापस आ रहे थे वो बराबर जम्मू की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज उन्हें भी कश्मीर से आने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि पूरी तरह से जो हाईवे है बंद है और किसी भी रिस्क का न लेते हुए कोई भी वो जो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है, हिफाजत जो भी मुसाफिरों की होती, चाहे वो टूरिस्ट हो, आम मुसाफिर हो या श्री अमरनाथ यात्री हो, हर एक के लिए यही कोशिश रहती है कि हिफाजत में रहें, महफूज मुकामात पर रहें। तो वही ट्रैफिक पुलिस ने भी किया, अगर हमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में कहेंगे और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में करीबन 1000 गाड़ियां जो कश्मीर आने वाली हैं, और इसी तरह काजीगुंड में कहेंगे वहां पर भी मतलब सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां जो है जम्मू जाने वाली है रुकी पड़ी है और आज उन्हें चलने की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है और ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे मुसलसल बंद है। इसलिए जो ट्रैफिक एडवाइजर ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक आपको ट्रैफिक एडवाइजरी या ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो एडवाइजरी रोज जारी की जाती है उसी के मुताबिक सफर करें और ऐसे हाईवे पर ना निकलें ताकि आपको हाईवे पर शाहरा पर किसी किस्म की मुश्किल का सामना न करना पड़े। जी
0: जी, आने वाले समय में मौसम की क्या इम्कान है, कैसा मौसम रहेगा?
1: जैसा कि महकमा मौसमियात ने 23 तारीख तक कहा था, लेकिन जो अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मजीद बारिशों का ये है, मतलब कल जो 24 तारीख है उसमें भी बारिशें दिखाई गई हैं, लेकिन इसमें बीच में वक्फा है जो आज शाम से शुरू होने वाला है। बकौल ट्रैफिक पुलिस के कि थोड़ा सा इसमें जैसे कल हुआ था कि कई घंटों तो 5-6 घंटों तो बारिशें नहीं हुई, तो ऐसा इम्कान आज भी है, लेकिन फिर जो रात में या सुबह के अवकात में मजीद बारिशों का इम्कान है। तो फिलहाल जो रेस्टोरेशन की कोशिश की जा रही है तो उम्मीद है कि जो क्योंकि कुछ मुकाम पर छोटा छोटा जो स्लाइड्स हुआ है या मलबा गिर आया है तो उसे साथ साथ साफ भी किया जा रहा है, लेकिन मुसलसल बारिशें इस चीज को मतलब मुश्किल बना रही है कि शाहरा को रेस्टोर किया जाए, ट्रैफिक को छोड़ा जाए। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस भी यही कोशिश कर रही है कि कोई रिस्क ना लिया जाए, ट्रैफिक को ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर देखेंगे तो गुज़श्ता रोज एक हादसा भी हुआ हाईवे पर, पत्थर गिरे एक गाड़ी पर, तो इससे इन चीजों को अवॉइड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो तब तक शाहरा पर ना आए जब तक उन्हें ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता है।
0: जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि यात्रियों और अन्य यात्रा करने वालों के लिए आप क्या जरूरी संदेश देना चाहेंगे?
1: यात्रियों के लिए यही है कि यात्रा के लिए जो ट्रैफिक का, उसी में भी ट्रैफिक पुलिस की ही एडवाइजरी उनको भी फॉलो करनी है, क्योंकि जब ये 18 तारीख की शाम को जब ऐलान किया गया कि 19 तारीख से ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा, यात्रा को बंद कर दिया जाएगा मौसमी खराबी की वजह से, तो उन्हें भी यही संदेश है उनके लिए कि जैसे ही ट्रैफिक पुलिस जब ये ऐलान करेगी कि अब हाईवे और बाकी जो यात्रा के रूट्स हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, महफूज हैं, उसके बाद ही वो निकले, तब तक बिल्कुल निकलने की कोशिश ना करें। और जहां जहां वो रोके गए, जैसे जम्मू में रोके गए हैं, रामबन में कुछ लोग रोके गए हैं, और बानिहाल में जो श्री अमरनाथ यात्री कश्मीर जाने वाले थे उन्हें रोका गया, उनके लिए खाने पीने का आला इंतजाम है, उनकी रिहाइश का इंतजाम है, इसलिए किसी भी अजलत में या किसी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बल्कि एडवाइजरी जो भी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या हुक्काम की तरफ से जारी की जाती है उसी के मुताबिक अमल करें, उसी पर अमल करें, और तब तक आराम से रहें जब तक ना हाईवे मुकम्मल तौर से बहाल किया जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: ये थे रामबन से हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रोका गया है। ये फैसला सिर्फ आपकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत है धैर्य और विश्वास की। याद रखिए, प्रकृति के अपने नियम होते हैं और उनका सम्मान करना भी इस पवित्र यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। थोड़ा सा इंतजार एक सुरक्षित और सफल यात्रा की ओर बढ़ने का कदम है। आपसे निवेदन है कि प्रशासन और सुरक्षा बलों द्वारा जारी सभी एडवाइजरीज और निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। हमें पूरा विश्वास है कि जैसे ही मौसम अनुकूल होगा अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू कर दी जाएगी और आपका पवित्र सफर फिर से आगे बढ़ेगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनी आस्था को मजबूत रखिए और सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण।

आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर।

प्रिय श्रद्धालुओं, खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा को फिलहाल कुछ समय के लिए रोका गया है। ये सिर्फ एक अस्थायी विराम है। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा और प्रशासन की अनुमति मिलेगी, यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। याद रखिए, धैर्य भी आस्था का एक रूप है। आज का ये छोटा सा इंतजार कल की उन यादगार घड़ियों को और भी खास बना देगा। बहुत जल्द आप कश्मीर की हरी भरी वादियों, खूबसूरत मैदानों, कल बहती नदियों, झरनों के मधुर सरगम और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपना पवित्र सफर फिर से शुरू करेंगे। तब तक प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और एडवाइजरीज का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और अपना विश्वास बनाए रखिए। हम इस पूरे प्रसारण के दौरान मौसम, यात्रा और यातायात से जुड़ी हर ताज़ा और आधिकारिक जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। हमारे साथ बने रहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: उन स्थानों पर ना रुकें जो चेतावनी नोटिस द्वारा चिन्हित हैं। चप्पल का उपयोग ना करें क्योंकि पवित्र गुफा के मार्ग पर खड़ी चढ़ाई है। केवल फीते वाले ट्रैकिंग शूज ही पहनें। रास्ते में शॉर्टकट का प्रयास ना करें क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है।
0: अपनी पूरी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी ना करें जिससे यात्रा क्षेत्र में प्रदूषण हो या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक के उपयोग पर सख्त प्रतिबंध है और ये कानून के तहत दंडनीय है। वेस्ट मटेरियल को नजदीक के कूड़ेदान में ही फेंकें। सभी प्रकार के जैविक कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना।

पहलगाम स्वदशम लवे मेगाहर्ट्ज़ न्यूज ऑन एआईआर के आराधना चैनल तथा डीडीएच और प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, हम लगातार अपने संवाददाताओं और संबंधित अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं ताकि मौसम, यातायात और अमरनाथ यात्रा से

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे श्रीनगर के संवाददाता इमरान नायकू। इमरान नायकू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ नए अपडेट्स हैं हमारे श्रोताओं के लिए?
1: देखिए, अभी आज पहले श्रीनगर की जहां तक मौसम का हम अपडेट आप तक पहुंचाएं तो श्रीनगर में सुबह आज बारिश हो रही थी, लेकिन हल्की बारिश हुई, लेकिन उसके बाद मौसम में बेहतरी आई और इस वक्त भी श्रीनगर में जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है, यानी कि बारिश रुक चुकी है और हल्के से बादल छाए हुए हैं और हल्की सी जो है धूप भी निकली हुई है। इसके अलावा आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक आला सचिव या हाई लेवल एक मीटिंग ली है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, CAPF, इंटेलिजेंस एजेंसी और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो आला अधिकारी या अफसरान थे वो मौजूद थे, जिनके साथ ये हाई लेवल जो मीटिंग है श्री मनोज सिन्हा साहब की सदारत में हुई, जिसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा की सिक्योरिटी और जो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है और जो दीगर अरेंजमेंट्स है उसका उन्होंने डिटेलर जो है रिव्यू लिया है, जिसमें LG साहब ने तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों को डायरेक्शंस दी कि वो मुकम्मल तौर पर चौकसी बरकरार रखे इंटेलिजेंस के जो बुनियाद परस्त या दहशतगर्द है उन की जो कार्रवाइयां है उनके खिलाफ उसको तेज करें और किसी भी तरह की जो है अनटोवर्ड इंसिडेंट को बर वक्त जो है वो नाकाम बना दे। इस मीटिंग में लेफ्टिनेंट जनरल GOC प्रतीक शर्मा, चीफ सेक्रेटरी अटल जालू, DGP जम्मू कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात, फौज पुलिस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंटेलिजेंस एजेंसी श्राइन बोर्ड और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान है उन्होंने शिरकत की और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो रिसेंट जो बारिशें हुई है और जो मौसम खराब हुआ है जिसके नजर यात्रा के जो तमाम अरेंजमेंट्स है या लॉजिस्टिक्स है और जो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स है उसका उन्होंने डिटेल रिव्यू लिया है और तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको हिदायत दी है, डायरेक्शंस दी है कि यात्रियों की जो हिफाजत है, उनकी जो सहूलियत है और उनको उनकी जो हेल्प या मदद जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर

0: फैसिलिटी, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और जो बाकी बेसिक फैसिलिटीज है उनका डिपार्टमेंट वाइज जो है रिव्यू लिया है, और तमाम डिपार्टमेंट्स को इनका मुकम्मल ऑडिट जो है करने की हिदायत भी दी है। और एलजी साहब ने बताया कि यात्रा के पहले 20 दिनों में 3,91,000 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं, और उन्होंने क्लियर किया है कि यात्रा की बहाली है इसका जो तसलसल है मुकम्मल तौर पर मौसम की सूरत हाल पर मुनासिर है, यानी कि जो मौसम बेहतर होगा तो उसके बाद ही यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। तो देख रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद भी सारी नजरें जो है, जैसे एलजी साहब ने भी कहा है कि मौसम की बेहतरी होगी तो उसके बाद ही गवर्नमेंट की तरफ से यात्रा को लेके कोई डिसीजन लिया जाएगा इसकी रिजम्पशन को लेके। लेकिन तमाम जो अरेंजमेंट है सिक्योरिटी को लेके या जो बेसिक फैसिलिटीज है उन पे आज उन्होंने बड़े डिटेल में जो है रिव्यू लिया है।
1: जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो दरियाए जहलम का फ्लड डिक्लेरेशन मार्क है उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट्स आए हैं?
0: देखिए उसमें आपको खुद भी मालूम होगा कि कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से जो बारिश हुई है, और बारिश के बाद जितने भी चाहे फ्लड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, तो हर जो कंसर्न महकमे हैं वो ऑन टू है, अलर्ट है और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग की जा रही है जो गैजेस है मुख्तलिफ जगहों पर दरियाए जहलम की। तो फिलहाल कहीं जगहों पर डेंजर मार्क तक है और कहीं जगहों पर हम देख रहे हैं कि अभी जो है नॉर्मल लेवल पे ही पानी जो है पहुंच चुका है, दरिया की जो वाटर लेवल है या रिवर की जो वाटर लेवल है। लेकिन एज सच जैसे मैंने कहा कि कंटिन्यूअसली जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो फ्लड प्रोन एरियाज है या जो दरियाओं के ज्यादा नजदीक रखने वाले जो लोग हैं वो इन रिवर्स के बैंक्स का रुख ज्यादा ना करें जब तक कि मौसम भी बेहतरी हो और पानी की जो लेवल है इसमें थोड़ा सा कमी हो। तो लेकिन फिलहाल अभी ये लोगों से कहा गया है कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है और गवर्नमेंट की जो मैन एंड मशीनरी है वो सारी सिचुएशन को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग कर रही है।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: ये थे श्रीनगर से हमारे संवाददाता इमरान नायकू। आप सुनते रहिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का ये विशेष प्रसारण।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें। विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
2: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्ट पेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्री पेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। जय जय बाबा बर्फानी।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्स, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्स, न्यूज ऑन AIR के आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। प्रिय श्रद्धालुओं, कभी कभी मंजिल तक पहुंचने से पहले प्रकृति हमें कुछ पल ठहरना सिखाती है। ये ठहराव कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और आस्था की परीक्षा होता है। आज अगर मौसम ने आपके कदम कुछ देर के लिए रोक दिए हैं तो याद रखिए, आपकी आस्था को कोई नहीं रोक सकता। विश्वास वही होता है जो मुश्किल घड़ियों में भी मजबूत बना रहे। बहुत जल्द बादल छटेंगे, रास्ते खुलेंगे और आप फिर

0: से कश्मीर की हरी भरी वादियों, खुशबू से भरे मैदानों, कल कल बहती नदियों, झरनों की मधुर आवाज़ और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बाबा बर्फानी के पवित्र दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आज का ये इंतज़ार कल के उन अनमोल पलों को और भी यादगार बना देगा। तब तक धैर्य बनाए रखिए, प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और एडवाइजरीज का पालन कीजिए और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखिए। याद रखिए, जब नीयत सच्ची हो और आस्था मजबूत हो तो हर रुकावट सिर्फ कुछ देर की मेहमान होती है। श्रोताओं, यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी गतिविधि का विवरण हम आकाशवाणी श्रीनगर के बालतल स्टूडियो से आप तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा मात्र एक हेल्पलाइन नंबर है 9596990954। इस पर आप अपने प्रश्न, विचार या आपका यात्रा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में।
1: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
2: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: जय बाबा बर्फानी।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। FM बाल दल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, न्यूज ऑन AIR की आराधना चैनल तथा DTH और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। श्रोताओं, आइए बाल दल बेस कैंप में रिकॉर्ड की गई आरती सुनते हैं।
4: सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी शिव भक्तों का बाबा बर्फानी जी के इस पावन पवित्र अद्भुत धाम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी शिव भक्त बड़े ही पुण्य कर्मी हैं, जो आप सभी आज प्रातःकालीन आरती के दर्शन कर रहे हैं। MH1 चैनल के माध्यम से जो भक्त

भक्तजन देश एवं विदेश में बाबा जी की इस पावन आरती की दर्शन कर रहे हैं, वह भी बड़े ही पुण्यकर्मी हैं। प्रिय बंधुओं, ये जो धाम है, ये त्याग का प्रतीक है। इस धाम में जब बाबा बर्फानी जी ने मां पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी, तो उससे पहले उन्होंने अपने मार्ग में अपनी सभी जो जैसे अपने गण, अपना श्रृंगार इत्यादि सभी का अपने मार्ग में ही त्याग कर दिया। इसलिए प्रिय बंधुओं, आप भी इस त्याग को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि ये जो त्याग है, इस त्याग से ही आप बाबा बर्फानी से जो मिल सकते हैं। इसलिए प्रिय बंधुओं, हमारे शास्त्र कहते हैं, ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु खड़ एते नित्य दुखिता। जो लोग दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने इस धाम में आकर कुछ सीखना है, तो यही सीखना है, हमने त्याग क्या करना है, हमने अपने अंदर की ईर्ष्या का त्याग करना है, घृणा का त्याग करना है, हमें अपने जीवन में संतोष धारण करना है। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और अपने अंदर के अपने भीतर के क्रोध का त्याग करना है। जो क्रोध है, यही जो क्रोध है, ये हमारे और बाबा के बीच में जो दीवार है, इसलिए इस क्रोध का त्याग करें। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, और हर बात पर शंका जो है, वो भी परमात्मा के साथ मिलन में एक वादा है। इसलिए हमें हर बात पर कभी भी शंका नहीं करनी चाहिए। ईर्षि गृणी ना संतुष्टा, क्रोधो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवीषु, और हमें कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने जो हम जीवन में हम कर्म करते हैं, उनके आधार पर ही हमें अपने जीवन का जापन करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, इस धाम में हमें यही सीखना है, हमें ईर्ष्या करनी है तो अपनी अपने अंदर की बुराई से करनी है, घृणा करनी है तो अपने अंदर की बुराई से करनी है। हमें अगर संतोष हमारे अंदर नहीं है तो किस चीज का नहीं होना चाहिए, परमात्मा से प्रेम का हमें संतोष नहीं होना चाहिए। और घृणा करनी है तो बुराई से, क्रोध से। प्रिय बंधुओं, इन सभी बातों को अपने जीवन में धारण करते हुए आज प्रातःकालीन आरती में प्रवेश करते हैं। बोलिए शंकर।

आप सभी भक्तजन बाबा के पवित्र धाम में बैठे हैं। कहते हैं भोले बाबा स्तुतियों से भजनों से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, तो आप सभी भक्तजन आज भोले बाबा ने हमें अवसर दिया है तो दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: नाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: पार्वती पते
1: हर हर हर महादेव। शिव शंभु ओम निरावलंब ममावलंबम विभाजेट विभत कदम्बम मदीय पापा जलपात प्रवर्त तांबाजी।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलें, विभिन्न स्थानों पर अनिवार्य विश्राम करें और एक समान गति सुनिश्चित करें। खाली पेट यात्रा ना करें और निर्जलीकरण और सिर दर्द से निपटने के लिए ढेर सारा पानी पिएं।
0: यात्रा के दौरान अपने साथ पोर्टेबल ऑक्सीजन अवश्य लाएं, क्योंकि सांस लेने में कठिनाई होने पर ये सहायक होता है। यात्रियों को यात्रा के दौरान पोस्टपेड सिम ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि गैर जम्मू कश्मीर सर्कल का प्रीपेड सिम जम्मू कश्मीर में काम नहीं करेगा। जय जय बाबा बर्फानी।
2: आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा का विशेष प्रसारण। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है इस विशेष प्रसारण को यहीं विराम देने का। उम्मीद है कि हमारे साथ बिताया ये समय आपके लिए उपयोगी रहा होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि मौसम जल्द अनुकूल हो और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आपका पवित्र सफर फिर से शुरू हो। याद रखिए, आस्था का हर कदम धैर्य से मजबूत होता है। आज का ये छोटा सा इंतजार कल की उस अनमोल घड़ी को और भी यादगार बना देगा, जब आप कश्मीर की खूबसूरत वादियों से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। तब तक प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों और एडवाइजरीज का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा रखिए। आपको बताते चले कि इस विशेष प्रसारण में हमें तकनीकी सहयोग प्राप्त हुआ हमारे इंजीनियर्स समीर अहमद भट्ट, एजाज अहमद और श्री सलीम का, और मैं थी आपकी उद्घोषक अनिका रशीद फराश। दीजिए इजाजत।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसाकर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए 3 वचन मांग लेती हैं, जिस कारण अयोध्या में गाज गिर जाती है और राजा दशरथ विलाप करते हुए कुछ इस प्रकार कह उठते हैं।

0: ये आकाशवाणी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक माला की दूसरी कड़ी। लेखक हैं श्री जगदीश चंद्र माथुर।
2: रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। बड़े बड़े प्रतापी एकत्र हुए हैं जनक की यज्ञशाला में। जनक अपने सेवकों को आदेश दे रहे हैं, सबको उनके योग्य आसन दो। भारी भीड़, जनकपुरी के बाल जुबान जरठ नर नारी अपने समस्त गृह कार्य बिसार कर रंगभूमि में उमड़ पड़े। और तभी राजकुंवर तेहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नागर बरबीरा, सुंदर श्यामल गौर सरीरा। श्रोताओं, भगवान रामचंद्र के आसन ग्रहण करने पर क्या हुआ?

0: नारी बिलो कहीं हरसिहिं निज निज रुचि अनुरूप जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप। और राम ही चितव भाई चेहिसिया सो स्नेहु सुख नहीं कथनिया। श्रोताओ, मैं बेचारा कवि कैसे उस अनिंद्य और सहस्र रूपी शोभा का वर्णन कर सकता हूं, आप स्वयं देखिए। मिथिलेश जनक की रंगस्थली में राजाओं की पंगत और नर नारियों के समूह के बीच राम लक्ष्मण, राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व बिलोचन चो।
1: सब नृपगणों को सादर अपने अपने स्थान पर बैठा दिया ना?
2: जी महाराज।
1: भीड़ बहुत है
2: किंतु सभी दर्शक अपने यथोचित स्थान पर बैठ गए हैं।
1: किसी से कटवाणी तो नहीं बोले?
2: नहीं महाराज, जैसा आपने कहा था हम लोगों ने मृदु वचन बोलकर सभी नर नारियों से विनती की।
3: देखा तुमने उन दोनों राजकुमारों को?
4: जहां जहां जाई कुंवर बर दो तहां तहां चकित चितव सबको।
5: मुझे तो ऐसा लगता है बिन भंजहूं भव धनुष विशाला मेल ही सी राम उर्माला।
4: बिना धनुष तोड़े ही क्या बात कही तुमने? तोरे हूँ धनुष ब्याहू अब गाहा बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे एक बार कालू किन हो सियहित समर जितब हम सो।
5: व्यर्थ मरहु जनी गाली बजाई मन मोद कन्ही की भूख बुताई।
4: सुंदर सुखद सकल गुण राशि ए दो बंधु संभु उरवासी।
1: भाटगण तनिक इधर आइए।
2: जी स्वामी।
1: अब आप इस सभा के समक्ष मेरा प्रण घोषित कीजिए।
2: महाराज, हम इसी अवसर की बाट जो रहे थे।
6: नगाड़ा बजाओ। हे पृथ्वी का पालन करने वाले उपस्थित राजागण सुनिए। पर्ण विदेह कर कहे हैं हम भुजा उठाए विशाल।
7: सामने मंच पर स्थित ये शिव धनुष भारी है कठोर है ये सभी जानते हैं। आपको ये भी विदित होगा रावण और बाणासुर जैसे महाबलियों को भी इसे छूने तक का साहस नहीं हुआ। समझ लीजिए कि आप लोगों का भुजबल तो मानो चंद्रमा है और ये कठोर धनुष उसे ग्रसने वाला राहु है। हमारे स्वामी मिथिलेश जनक की घोषणा है सोई कुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जो इतोरा तिरुभवन जय समेत वैदे ही बिन ही विचार बरई हटते।
2: अरे देखो देखो कैसे तमतमाकर ये राजा लोग धनुष की ओर जा रहे हैं।
5: पर एक आज तो अपने आसन से उठा ही नहीं।
2: वे समझदार हैं और वो देखो वो जो तमक कर जोर अजमाने चला था ना तनिक भी खिसका नहीं सका धनुष को। अरे सभी तो जोर लगा रहे हैं।
7: हाँ बेकार जान पड़ता है और भी भारी हो गया है ये धनुष। मनु पाई फट बाहुबल अधिक अधिक करुआ।
2: ये सब राजा एक साथ जुट गए हैं वो देखो। पर
7: दगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मनु जैसे।
2: सब नृप्र भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी।
7: सभी राजा श्रीहत होकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। अब क्या होगा?
2: होगा क्या, लौटेंगे अपना समूह।
7: चुप चुप चुप जनक जी कुछ कह रहे हैं।
2: शांत शांत शांत।
8: अतिथियों, मैं ये क्या देख रहा हूं? दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जोपन उठाना। मेरी मनोहर कन्या बड़ी भारी और अतिकमनीय कीर्ति। इन्हें पाने के लिए इस धनुष का दमन करने वाला वीर क्या विधाता ने रचा ही नहीं। इस धनुष को तोड़ना तो अलग रहा, कोई इसे दिल भर भूमि भी न छुड़ा सका। अब जनिको माखे भटमानी, वीर बीन मही मैं जानी। जो जनते हूं बिन भट भूमि भाई, तो पनु करी होते हूं ना आसाई।
9: अब क्या होगा?
10: देखो छोटा भाई कुछ कह रहा है,
2: उसका मुख तो देखो। माखे लखन कुटिल भाई भौहे, रद पट भरकत नयन रिसोहे।
11: हे दात, रघुवन सिंह महु जह को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। राजा जनक ने आपके यहाँ होते हुए भी बड़ी अद्भुत वाणी कही। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। काचे खट जिमि टारो फोरी, सकऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बाप रोपे नाक पुराना। नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करूं बिलोकी अवसो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। हे नाथ, यदि आपके प्रताप के बल से इसे कुकुर मुत्ते की तरह ना तोड़ फेंकूं, तो आपके चरणों की शपथ है मुझे, मैं फिर कभी धनुष तरकश को हाथ में भी ना लूंगा।
10: सुना प्रभु? देखो बड़ा भाई क्या कह रहा है, वो भी कुछ कहेगा क्या?
2: ना सय नहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा दे।
10: विश्वामित्र मुनि उठ रहे हैं,
2: जा रहे हैं क्या?
10: बड़े राजकुमार से कुछ कह रही है।
12: दशरथ पुत्र पुरुष सिंह, तुम्हें इस संकट का निवारण कर सकते हो वत्स। उठहु राम भंजहु भव चापा, नेटहु तात जनक परितापा।
13: सखी देखो तो खड़े हो गए राम, पर देखो देखो मुखड़े से लगता है हर्षु विषादु न कछु उर आवा। मुझे तो इनका सहज स्वभाव से उठना अच्छा लगता है। थवनी जुबा मृगराजु ल जाए। सखी देखो तो उदित उदयगिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन फ्रिंग। देवताओं पितरों से मेरी तो प्रार्थना है सखी, यदि हमारे पुण्य कर्मों का कुछ भी प्रभाव है तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहू रामू गणेश गोसाई। सखी सखी महारानी कह रही है, सब लोग कौतुक निहार रहे हैं, कोई जाकर इन दोनों के गुरु विश्वामित्र को समझाता क्यों नहीं। राजा जनक भी अपनापन खो बैठे हैं। कहती हैं, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार सकल भूप कर तापा। सौधन राज कुंवर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ले ही। ऐसे तेजवंत को छोटा नहीं गिनना चाहिए, देखो ना। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोख्य सुजसु सकल संसारा। रबी मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। छोटा सा मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को बस में कर लेता है, जरा सा अंकुश महामत गजराज को दबा लेता है। हो प्रसन्न महेश भवानी, मैंने आपकी जो सेवा की है

0: हलवती कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गण नायक बरदायक देवा, आज लगे कि न्यो तो सेवा, बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरता अति थोरी। पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठाना है, वो लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री भी डरे हुए हैं, वो भी तो पिताजी से कुछ नहीं कहते। विद्वानों की सभा में ये बहुत ही अनुचित बात हो रही है। कह धनु कुल सहु चाहे कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। हे विदाता, मैं किस तरह धीरज धरूं? भला कहीं सिरस के फूल के कण से हीरा छेदा जाता है? लगता है सारी सभा की बुद्धि ही पावली हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरु रघुपति निहारी।
1: सखी सखी, तुम जरा सीता को संभालो, न जाने क्या बीत रही है इसके जी पर। राजकुमारी, परिताप मत करो।
2: राजकुमारी, चिंता के मारे तुम्हारी आंखें इधर उधर डोल रही हैं। प्रभु ही चितई पुनि चितब मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जन विधु मंडल डोल।
1: बोलते क्यों नहीं राजकुमारी? गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी,
2: लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना।
0: यदि तन मन वचन मोर बनु साचा, और रघुपति पद सरोज जितु राजा है, तो भगवान सकल उर्वासी, करे ही मोहि रघुबर के दासी। जेहि के जेहि पर सत्य सने हो, सोते ही मिले न कछु संते हो।
1: आंखें खुलो राजकुमारी, वो तुम्हारी ओर देख रही हैं।
3: सीता की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। लगता है उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यही समय है, अब मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिषित बारि बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने। गुरुवर के चरणों में मेरा सादर प्रणाम।
1: देखो उधर देखो सखी, लखन लिखे रघु बंस मनी, ताके हर को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मंड।
4: हे दिशाओं के हाथियों, हे धरती को धारण करने वाले कच्छप शेषनाग बारह, राम चहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आयसु मोरा।
5: ये क्या हुआ? कैसे दामिनी दमकी? आकाश में ये गोल गोल सा आकार कहां से आया?
6: वही तो धनुष है।
5: उठा भी लिया?
6: उठाने की बात करते हो, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े।

0: सखियो, राजकुमारी को राम के पास ले चलो। जयमाला पकड़ाओ, आगे बढ़ो बेटी।
1: राजकुमारी, सामने रघुवीर राम खड़े हैं, अब संकोच न करो। पहिरा बहु जयमाल सुहाई, बेचारी प्रेम विवश पहराई न जाई। जब उन्हें इतना भी स्पर्श नहीं कर पाती तो पैर किसे छूगी राजकुमारी? समझे नहीं सकी, गौतम तियगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी।
2: राजकुमारी के इस भय की बात सुनकर रुक

वंशमणि मुस्कुरा उठे। राजकुमारी, वो मुस्कुरा रहे हैं, यही अवसर है। राजकुमार के चांद मुख से हमारी राजकुमारी के कर कमल भयभीत हैं। गाओ गाओ सखी, जयमाला पड़ रही है।

0: ये भी कोई बात है?
1: आओ खड़े, बहनों का बात।
0: क्यों भाई, क्यों?
1: छीन लो सीता को, दोरे धनुष दौड़ नहीं सरे।
0: दोनों राजकुमारों को बांध कर ले चलो, जीवत हमारी तुम्हारी को बरई।
1: और महाराज जनक उनकी सहायता करें
0: तो भी जीतऊ समर सहित दो भाई।
2: कैसी निर्लज्ज बातें कर रहे हैं आप लोग? उस समय आपकी शूरता कहाँ गई थी जब धनुष तोड़ना था?
3: शान शान, अरे आप लोग बैठे।
4: अरे इधर देखो, इधर उधर देखो, प्रवेश द्वार की तरफ
3: है। ये कौन आ रहा है? बिशप कंठ और बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला,
5: कटिमुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे।
3: रघुपति परशुराम, परशुराम।
6: हे हे राजा जन, आप लोग शांत भाव से अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। भृगुकुल भास्कर मुनि के शरीर में वीरस के साकार स्वरूप परशुराम जी सभा में पधार रहे हैं। आप सब क्षत्रिय राजागण अपने अपने पिता का नाम लेकर मुनिवर को दंडवत प्रणाम करें।
7: दंडवत प्रणाम,
8: प्रणाम,
9: प्रणाम,
10: दंडवत प्रणाम,
11: दंडवत प्रणाम,
12: दंडवत प्रणाम।
13: विदेहराज, आपकी इस रंगस्थली में कहो काह अति भीड़।
14: मुनिवर, बात ऐसी है कि मेरी बेटी सीता, जिसे अभी आपने अपना शुभाशीर्वाद दिया है, उसका स्वयंवर था, इसलिए सभी राजागण मेरे अतिथि होकर आए हैं, और इसीलिए सभा में ये सजावट शोभा भी आप देख रहे हैं।
13: ये तो हुआ, पर ये धनुष क्यों टूटा पड़ा है?
14: जी, मैंने ये प्रण किया था कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता का स्वामी होगा। तो
13: मेरे आराध्य देव का धनुष कहूं चढ़ जनक धनुष कै तोरा, बेग दिखाओ मूढ़ नत आजू, उलटऊ मही जहां लही तब राजू।
15: नाथ, संबुधनु भंज निहारा, होई ही क्यों एक दास तुम्हारा?
13: मेरा दास सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम, जय शिवधन तोरा, सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सौ बिल गाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा।
16: मुनिवर, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबू नासी रिस कीनी गोसाई, एह धनु पर ममता के हेतु।
13: रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न समार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार।
16: सुनहु देव, सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुवत टूट रघुपति हु ना दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरो।
13: रे शठ, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना क्या? बालक बोली बदहु नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुज बल भूमि भूपि बिनुकीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। रे महीप कुमार, देखिए फरसा, सहस बाहु भुज छेदन हारा, कहे देता हूं मातु पितही जनी सोच बस, करसी महीप किशोर, गर्भन के अर भक्तलन परसु मोर अति भोर।
16: मुनिवर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूके पहारू। सुनिए महाराज, यहाँ कुम्हार बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरे जाए, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपको भृगुवंशी समझकर आपके जनऊ को देखकर आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोक कर कहता रहा। हमारे कुल की रीति सुर महिसुर हरिजन और गाय, इन पर हम लोग अपनी वीरता नहीं दिखाते, इन्हें मारने से पाप और इनसे हार जाने पर अब कीर्ति मिलती है, इसीलिए आप मारेंगे भी तो भी आप ही के पैर पड़ेंगे। के तो मुनिवर, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। और जो बेलो की अनुचित कही क्षमो महामुनिधीर।
13: कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुधा संकु काल कबुल हुई है छन माही कहूं पुकार खोरी मोहिनाई तुम हटकौ जो चहू उबारा कही प्रताप बलु रोष हमारा।
16: हे मुनि आपके सुयश का वर्णन आपके रहते कौन कर सकता है। अपने मुंह तुम आपन ही कर बार अनेक भांति बहुबरनी नहीं था तो सु तब पुनि कुछ कहू जनेरे से रो के दूसरा दुख सहू वीर व्रती तुम धीर अछोभा गारी देत ना पावहु शोभा सूर समर करनी कर कही ना जना वही आप विद्यमान रन पाए रिपु कायर कत ही प्रताप। लेकिन आप मुनिवर आप तो तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार मोही लागे बुलावा।
13: सुनिए विश्वामित्र अब जन देख दोष मोही लोगू कटुवादी बालक बध जोगू बाल बिनो की बहुत मैं बाचा अभी यू मरने हार भा साचा।
7: क्षमा करे बंधुवर इससे अपराध हुआ बाल दोष गुण गना ही न साधु
13: घर कुठार में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही उत्तर देता जा रहा है फिर भी बिना मारे से छोड़ देता हूँ। सो क्यों केवल कौशिक सील तुम्हारे नत यही काट कुठार कठोरे गुरही उरिन हो त्यूं श्रम थोरे।
16: हे भगवते परशुराम परसु दिखा बहु मोहि मित्र बेचारी पचौ नृप द्रोह मिले न कबहु तुभट रन गाय विज देवता घर ही के बाड़े।
13: अनुचित है
16: अनुचित है अनुचित है अनुचित है।

0: रघुवर परसु दिखा बहु मोहि मित्र बेचारी पचौन नृपद्रोह मिले न कबहु सुभट रन गाय विज देवता घर ही के बाड़े
1: अनुचित है
2: अनुचित है
3: नाथ करहु बालक पर छोहु सूद दूध मुख करिय न कोहु जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना तो की बराबरी करत आयाना जो लड़िका कछु अजगर करही गुरु पितु मातु मोद मन भरी करिय कृपा शिशु सेवक जानी तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी।

0: नीच मीच सम देख न मोही।
1: सुनिए मुनिवर, क्रोध पाप कर मूल, जे ही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरि कोप करिए अब दाया। टूट चाप नहीं जुरही रिसाने, बैठी हो ही पाए पिराने। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाए।
0: राम, मैं तेरे ऊपर ये कम कृपा नहीं कर रहा हूँ, बचा हूँ बिचारी बंधु लघु तोरा। इसका तो मनु मलीन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे।
2: सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करिए नहीं काना। बररे बालकु एक सुभाऊ, इनही न संत विदुष ही काऊ। तेही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बतु बंधव गुसाई, मौ पर करिए दास की नाई। कही ये बेग जही विधि सिचाई, मुनि नायक सोई करो उपाय।
0: राम, मेरा रोज कैसी जा सकता है, जब अजहू अनुज तब चितव अनय से। मेरा रोज क्या प्रथा हो जाए, नहीं एही के कंठ कुठारु न दीना। तो मैं काह कोप कर कीना, ये भी कोई बात है। गर्व स्रवही अब निप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछति देखाऊं जियत, बैरी भूप किशोर।
2: हे मुनिवर, क्रोध त्याग दें, आपके कुठारू के आगे मेरा सिर है। जहीं रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। मुनिवर, प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु विप्रवर रोसु, बेशु बिलोकी कछु नहीं दोसु। बात ऐसी है मुनिवर, लक्ष्मण तो लड़का ही है। देख कुठार बाण धनुधारी, भय लड़के ही रिस बीरु बिचारी। नामु जान पे तुम्ही न चीन्हा, बंस सुभाए उतरो तही दीन्हा। यदि आप अन्य मुनियों की भांति होते तो हे गोसाई, यही शिशु आपकी पदरज अपने सिर पर रखता। क्षमहु चूक अनचानत केरी, चहिए विप्र उर कृपा घनेरी। हे नाथ, हम आपके बराबर होने की कैसे धृष्टता कर सकते हैं। कहां तो धरती पर चलने वाले चरण, और कहां उन्नत मस्तक। और फिर राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुहारा। देखिए हमारा तो एक ही गुण है धनुष, और आपके नौ गुण हैं श्रम दम तप इत्यादि, सभी परम पुनीत। विप्रवर, सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे।
0: तू भी अपने भाई की तरह टेढ़ा जान पड़ता है, मुझे निपट ब्रह्मचारी न जान। सुन, तुझे बताता हूं कि कैसा विप्र हूं मैं। चाप स्रवा सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं एही परसु काट बल दीने, समर जग जप कोटे ने कीने। तू ब्राह्मण मात्र के धोखे में मेरा निरादर कर रहा है, तुझे मेरा प्रभाव नहीं मालूम। ये धनुष क्यों तोड़ डाला, तेरा घमंड बढ़ गया और तुझे ऐसा अहंकार हो गया है, मनहु जीत जब उठा रहा।
2: तनिक सोच विचार कर बोलिए मुनिवर, रिस अति टूट पिनाक पुराना, मैं कहीं है तू करो अभिमाना। यदि हम सचमुच किसी को विप्र कहकर उसका निरादर करेंगे तो ये सत्य भी सुनिए कि संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिससे डरकर हम अपना मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलबाना। जौरन हम ही पचारे को, लरही सुखेन कालु किन हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंकु तही पावर आना। कहो स्वभाव न कुल ही प्रसंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी।
0: क्या कहूं मैं,

0: लगता है मेरी बुद्धि पटल उखड़ गए हैं, पर फिर भी राम रमापति करधन लेहू, खेचहू मिटे मोर संदेहू।
1: अरे अरे, ये कैसा चमत्कार, धनुष आप ही आप मुनि के हाथों से उड़कर राम के पास पहुंच गया।
2: अद्भुत आश्चर्य, राजकुमार है कि ये देवता।
3: देखो देखो, भृगुपति परशुराम हाथ जोड़ रहे हैं।
4: अरे ये तो राजकुमार राम के आगे विनती कर रहे हैं। सुनो सुनो।

0: जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुकुल केतु की जय, जय जय रघुकुल केतु की जय, जय रघुपति, जय रघुपति।
1: हे श्रोताओं, भगवान श्री राम ने कौतुक भरी लीला करके सीता स्वरूप आदि शक्ति से मिलन का अभिनय किया। उसके बाद हम आप जिसे विवाह कहते हैं वो तो रीति निभाई, क्योंकि जैसा उसी समय विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा, टूटत ही धनु भयउ विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। फिर भी राजा जनक ने अवधपुरी को दूत भेजे। दूतों ने अयोध्या जाकर महाराजा दशरथ से आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। फलतः सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। फिर तो अवधपुरी के सारे समाज में हर्ष की लहर दौड़ गई। पूरे ठाट बाट और सज धज के साथ अयोध्या से बारात जनकपुरी आई। श्रोताओं, विवाह संपूर्ण होने पर राजा दशरथ चारों वर वधुओं को लेकर बारात के साथ अवधपुरी लौटे। अयोध्या में भांति भांति से आनंदोत्सव मनाया जाने लगा।

भवभञ्जन भवभञ्जन गुण भवभञ्जन गुण गाव रब मन अपन राम अपने

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।